0: उनको फिर इन्फॉर्मली कहा गया कि आप अपनी बंद कर दें, ये लॉन्ग मार्च ये आप घर में कॉल ऑफ कर दें, अभी भी आपके साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। वो चाहते नहीं थे कि मुल्क में अमन का इस जत्थे से, लॉन्ग मार्च से जो इस्लामाबाद आके आना चाहते हैं और उस एक भयानक वो यादों को ताजा करना चाहते हैं जब कपड़े टांगे होते थे डी चौक में और क्या कुछ तमाशा, कब्रें खोदनी, खुदादाद उनके पाकिस्तान का दोबारा हशर नशर करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को दोबारा आप तबाही के दाने पर लेकर पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी की और कोई हरकत हो नहीं सकती। बिल्कुल, क्या आप खामोश तमाशाई बनेंगे और बैठे रहेंगे? ये नहीं होगा। कानून अपना रास्ता अपनाएगा और हर सूरत अपनाएगा इंशाल्लाह। ये मैं नहीं होने दूंगा।
1: छा मुल्क दुश्मनी ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदा सी। एक जत्थो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान के वीर तबाही के किनारे ते पहुंचाइण चाहे तो पाकिस्तान के नुकसान रसायण वाली हर कोशिश के नाकाम बणाईंदा सी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वफाकी काबीना के इजलास के खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है छाई घड़ी घड़ी पेंजी रांद रचाइण चाहन था। इस्लामाबाद ते बीहर चढ़ाई जो मनसूबो जोड़ो वो है आईन न थन्द ए कानून पैंजो रस्तो इख्तियार कन्द। केपीके हुकूमत दहशतगर्दी खिलाफ वफाक से सहकार करण में तैयार ना है। दहशतगर्दी खिलाफ एक लफ्ज भी न पाया गाल। केपीके जो वो वजीर मुल्क में मुआशी बेहतरीन न तो चाहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
7: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
11: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर, बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं। फारहान शुगर में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कालू। नोट, सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज़

0: पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहमेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नार्मल सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301 43 843 842।
0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहर परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
3: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हमी आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर ईद अल्ट्रासाउंड स्पेशाउंड कंदी आहे
5: यादि रखंदा डॉक्टर हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
7: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजनि खे लेंसेस खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज़ पाण सां गॾु मौसम

0: मुताबिक बिस्तरों ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जेकरे तवा के मेदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान छण जी जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मेदा कोरस, जेको मेदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: तो सूबे में सिविल इंतजामिया सा गड सिक्योरिटी सहकार लाए पाक फौज भी मुकरर पिशावर में कैंटीन हटाएं एंटरटेनमेंट जुजवी तौर बहाल करण जो ऐलान करे छड़ियो सूबे में पीटीआर रेड लाइन बंद करे रेड जोन के सील कयो वयो पिशावर में समूरा सरकारी ए खानगी तालीमी इदारा अज बंद रहंदा पिशावर बोर्ड जा इम्तिहान भरण जा तल मुद्दे ताईं मुलतवी
7: रियासत जो अज़म आहे त खैबर पख्तूनख्वा में अमुन जो क़याम यकीनी बणायो वञे सूबे जो अमुन अमान पहिरीं तरजीह आहे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जी सारत में 11 रुकनी काउंसिल जो पहिरियों इजलास थियो फैसल करीम कुंडी जो चवणु आहे त वक़्तु अची वियो आहे त केबीके अमुन अमान क़ाइम कयो वञे एपेक्स कमेटी जे इजलास में केबीके जे 12 ज़िलनि में फ़ौजी मुक़ररीअ ते ग़ौर कयो वेंदो करप्शन ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस आहे सूबे जी तरजीह
6: अख़्तियार वलीअ जो केपीअ में ईंदड़ चूंडनि ताईं गवर्नर राज बरक़रार हुअण जो इशारो वज़ीर आज़म जे केपीअ लाइ कोआर्डिनेटर अख़्तियार वलीअ चयो आहे त ज़रूरत पई त ईंदड़ चूंडनि ताईं गवर्नर राज बरक़रार हूंदो सोहेल आफरीदी महफ़ूज़ तवील में आहे हिन पाण खे इंतज़ाम हवाले कयो
7: सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमलो पाकिस्तानी शहरी मारिजी विया 11 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया हुसी मलेशिया जे हमलनि सबबि शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरीनि जे मारिजण जी तसदीक करे छॾी गुज़िरियल एयरपोर्ट ते हमले में अमेरिका सऊदी अरब बंगलादेश उर्दन मिसर ऐं फलस्तीन जा 12 शहरी मारिजी विया ऐं 309 ज़ख़्मी थी पिया हुआ
6: पिरियालो जे कचे वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जी फायरिंग में माउ ऐं धीउ क़तल फैज़ मोहम्मद बिंडो थाणे जे हद ॻोठ बुरड़ा नारे जो में हथियारबंदनि फायरिंग करे सनम ज़ाल इतबार नारे जो ऐं संदसि 19 वरनि जी धीउ सलमा खे क़तल करे छडि॒यो वाके जे इतलाह ते हद जी फैज़ मोहम्मद बिंडो पुलिस मक़तूलनि जा लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतक़िल करे छडि॒या पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूला सनम नारे जे ते संदसि मुड़ुस इतबार नारे जे क़तल जो इल्ज़ाम हो वाके बाद बई माउ धीअर 3 सालनि खां गुम हुई

0: गुजरियल रात भाउ वटि आयूं त हथियारबंदनि खेन क़तल करे फरार थी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: प्राप्ती सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फत आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर व्हाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर व्हाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर व्हाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर व्हाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर व्हाइट।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
9: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
11: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा।

0: उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस: मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल, कराची, रियाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ाम माणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125257 86।
3: जी हा, 2311 25 25 786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इन टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। जैसे ही आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल टिप टॉप सेट के एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल्के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है प्रोग्राम में। हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो 11:15 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, तमाम तरह लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो लोग इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक पे है, बीच में जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाव सेफ सेफ जर्नी, बट इन द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। वफ़ज़ली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

हैं आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKI टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए. 8881 पे कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/GLRKANAFM88.8 और GAFM88 के पेज के ऊपर. इन दोनों पेजेस पे एग्जैक्टली एट द टाइम आपको एक ही लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलेगी और वो होगी सुपर वाइट वालों की, यानी कि जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट. तो सुपर वाइट प्रोडक्ट इस ऑडियो स्ट्रीमिंग को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन तक शेयर करें फर्दर अपने पेजेस पे, प्रोफाइल्स पे, ग्रुप्स में, जहां मर्जी शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें. और मेक श्योर जितने लोग ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं वो शेयर के बटन को दबा के रखें, ठीक है. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, इंक्लूडिंग सुपर वाइट कॉन्वर्सेशन. तो सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्षय कॉस्मेटिक्स, जो कि बना रहे हैं आपके लिए बहुत मजे के प्रोडक्ट्स. और बहुत मजे के प्रोडक्ट्स वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लग पाए बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा हसीन. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, आप सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट अक्षय कॉस्मेटिक्स वाले ने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं छोड़ी है जो कि आप लोगों के लिए ना बनाई हो. तो सुपर वाइट अक्षय कॉस्मेटिक्स वालों, नहीं सॉरी, सुपर वाइट अक्षय कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं विटामिन सी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट वाले ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी बनाते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन टाइप ऑयली है. इसके अलावा सुपर वाइट अक्षय कॉस्मेटिक्स क्रीम, सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, जो कि आपकी किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल और मजीद और इन्हेंस कर दे, ठीक है. इसके अलावा फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज आती है. सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश और सुपर वाइट का ऑयल फ्री एंटी एक्नी फेस वॉश. इतनी अच्छी और खूबसूरत बना देने वाली रेंज जो कि फेस वॉशेस में भी आती है. इसके अलावा सुपर वाइट जो कि आप लोगों के लिए और भी दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम, पेट्रोलियम जेली, जिसमें अलग अलग किस्म के अच्छे अच्छे से वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी, लाइक पिंक, लाइक कोकाओ बटर, इतने अच्छे अच्छे वेरिएंट्स जो कि आप लोग इनके बाय करके यूज कर सकते हैं इस सीजन में, जहां आपको पेट्रोलियम जेली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. तो सुपर वाइट वाले आप लोगों को देंगे एक अच्छी सी पेट्रोलियम जेली, जिसका जार आप लोग बाय करके रख लें और पूरा सीजन इस्तेमाल करें. चाहे तो 2 से 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है, जिन लोगों की खासतौर पर ड्राई स्किन होती है या जिन लोगों की एड़ियां जो हैं वो फट रही होती हैं इस सीजन में जो कि अब शुरू हो चुका है, नेल्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, तो यही वजह होती है जिसकी वजह से आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है. और पूरी पूरी 1 बजे तक आपका और मेरा साथ होगा, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स.

0: It's 11:30.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश और बीरोना की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिन में आहिन चार अंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, आई चामरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन एंड रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिल वीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं तो नहीं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

आदर जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और जिंदगी गुलजार है जिसको स्पॉन्सर कर रहा है सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय एक्सेल क्रिस्ट मॉडल. और इसी के साथ हम चलेंगे वाइट वाले अगर यानी कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स अगर कहीं भी अवेलेबल नहीं है वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर्स नोट डाउन कर लेने हैं. सखर और लाड़काना वालों के लिए सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर

सखर और लाड़काना वाले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए। इमरान साहब से आप लोग जो है रब्ता करेंगे 0314775462। ठीक है, एक बार स्लोली रिपीट करेंगे 0314775462 0314775462। ठीक है, ये सखर और लाड़काना वालों के लिए स्पेशली, और जो हैदराबाद वाले हैं वो रब्ता करेंगे मुमताज हसन खान साहब से। ठीक है जी, तो उनका नंबर है 0370256832। ठीक है, इसको डायल करेंगे और हैदराबाद वाले इस नंबर पर रब्ता करेंगे, जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट्स को वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे, और ये पूरा पूरा फायदा सुपर वाइट के प्रोडक्ट से, क्योंकि सुपर वाइट ही वो वाइट प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को, आपकी खूबसूरती को सुपर से डुपर और सुपर से ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो सुपर वाइट की खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रही थी, सुपर वाइट की ऑयली ब्यूटी क्रीम, क्या कमाल की ब्यूटी क्रीम है, सुपर ब्यूटी क्रीम जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें भी मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं और ऑयली स्किन टाइप वाले लुक हैं, वो इसको यूज करके अपनी ऑयली स्किन टाइप को एक तो बहुत बेहतर बना सकते हैं, दूसरा अगर ऑयली स्किन टाइप वाले लोग, ऐसी स्किन टाइप वाले लोग जिनकी स्किन टाइप ऑयली भी है और साथ में उनकी स्किन पे एक्ने भी है, और एक्ने चाहे आपकी किसी भी किस्म की हो, एक्ने निशानात वाली हो, एक्ने पस वाली हो, पिंपल्स हो, छोटे छोटे बम्प्स हो, तो उन सबको खत्म करेगी सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के पहले ही 3 दिन के इस्तेमाल से हम वाजिब फर्क देखेंगे, लेकिन अगर इसके रिजल्ट को आप डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं और इनहेंस करना चाहते हैं, तो सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के साथ सुपर वाइट ऑयल फ्री फेस वॉश को भी जरूर इस्तेमाल करें। सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री फेस वॉश, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे, साथ में करेंगे, और अगर इनके रिजल्ट्स को भी डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं तो फिर करेंगे ये सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में सुपर वाइट

0: सीरम बूस्टर को ऐड करेंगे, सुबह वाई ब्यूटी सीरम बूस्टर को ऐड करने के बाद आपको पहले 3 दिन में वाजे फर्क नजर आएगा। अच्छा, ऐड किस तरीके से करना है वो भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को आप लोगों ने सब आगे बाय करना है, साथ में ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और साथ में सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर। अच्छा, सुपर वाइट सीरम बूस्टर को आपने खोलना है और सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों ने ऐड कर देना है सारा का सारा, ठीक है। और ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करें कि दोनों आपस में यकजा हो जाए, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आप लोगों ने इसको जो है स्टोर कर लेना है, और स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करना है। सबसे पहले सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से, और सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करें, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है जब तक कि आप खूबसूरत, जब तक कि आप हंसी नहीं हो जाते, ठीक है। और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को आपने इस फॉर्मूले को रात को सोते वक्त डेली बेसिस पे लगाना है, और लगाने के बाद सो जाना है। सुबह उठेंगे और फिर से अपने फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से, और ऑयल कंट्रोल फेस वॉश को जो है अपनी स्किन केयर रूटीन में इस तरीके से ऐड करें आप लोग के जितनी भी बार फेस को वॉश करें ना आप लोग, तो सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से ही फेस को वॉश करें, ठीक है। दिन में जितनी भी बार फेस वॉश करें, जहां भी जाकर फेस वॉश करें, लाइक अगर आप वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर जितने भी मर्द हजरात जो कि बाहर काम करते हैं, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, ठीक है, पूरे दिन में कभी भी। और इसके साथ साथ वो तमाम सारे लोग जो कि अपने सोप को चेंज करना चाहते हैं और एक बेहतर सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुपर वाइट के सोप्स की जाते हैं। सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल सोप आता है, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल सोप जो कि आप अपनी पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, सर से लेकर पांव तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर वाइट का राइस सोप, ठीक है, आप चाहे तो फेस वॉशेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सोप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स को जो कि कुछ ही दिन में आपको दिख जाएंगे, और आपको दिखने मानते लोग जो कि आपके हैं या जो आपको डेली देखते हैं वो आपको देख के बता देंगे कि कुछ तो है जो हो रहा है, और ये क्या हो रहा है वो आके आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आप लोगों की कॉल्स लेना हम स्टार्ट करेंगे 03000113488 के ऊपर, सेम कॉलर्स आएंगे तो ड्रॉप कर दूंगी, फिर ना कहिएगा आपने बताया नहीं। और मेक श्योर कि जितने भी लोग मतलब कॉल पे आते हैं और उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं सलाम देने को, तो वो जो सलाम देने को बहुत सारे लोग होते हैं उस सलाम को साइड पे रख के अगर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मतलब के मुद्दे पे आएंगे और उससे रिलेटेड बात करेंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को मौका भी दे पाएंगे, हम सबको सुन के मजा भी आएगा और हम बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे 03000113488 के ऊपर। फर्स्ट कॉलर, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं हाफिज लखनी बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज लखनी भाई कैसे हैं? ठीक हैं, डेली कॉल लगती है आपकी, अब मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे जल्दी से?
1: जी जी,
0: जल्दी से सुना दें, और फिर कल कॉल नहीं लगानी, परसों भी नहीं लगानी,
1: ठीक है?
0: ओके।
1: एक सहरो मुझी नजर में आए, नजर में आए, रह दो बे मुझे शहर में आए, एक सोरो मुझी नजर में आए, नजर में आए, रह दो बे मुझे शहर में आए, पर सिरी से रह दो परे आ, बारिश जो
0: सब। ओके, काफी है, किसको डेडिकेट करेंगे?
1: आप सावन डेलोर साहब, शैम डेलोर साहब, सरदर साहब, और जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे जान मोहम्मद अब्रो, आप जो भी सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू। 03000113488 एक और कॉलर, हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउडली बात करें, जोर से बात करें ताकि आपकी आवाज पहुंच सके।
1: जी जी,
0: कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: जी जी,
0: कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी जी
0: जी जी, से आगे भी बात कर रहे हैं, प्लीज बताएं कौन बात कर रहे हैं।

0: हेलो
1: जी जी,
0: अब मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी इस जीजी का, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। 3000 11 34 88 एक और कॉलर लेंगे। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं हीर बलोच बात कर रही हूँ, जिला नौशरफ रोड से।
0: हीर बलोच कैसी हैं? ठीक ठाक हैं,
1: अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीर बलोच, आप वही वाली हीर बलोच तो नहीं है जो कि आधी वायरल है सखर से?
1: नहीं, वो तो नहीं है मैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम जो है ना अक्सर सुनती रहती हूँ बेहतर, लेकिन मैं शामिल कभी कभी होती हूँ।
0: शामिल कभी कभी होती है, चलें जबरदस्त। अच्छा, आज पहली बार शामिल हुई है? पहले हो चुकी हैं?
1: जी नहीं, मैं कई बार हो चुकी हूँ, लेकिन मैं 2-3 माह के अंदर ना एक बार सिर्फ कॉल करती हूँ।
0: इतने मतलब इतना अवॉइड क्यों करती है मेरे शो से?
1: मुझे सुनने का ज्यादा शौक है।
0: अच्छा, सुनने का ज्यादा शौक है, कॉल करने का इतना नहीं है
1: जी।
0: अच्छा, आज किस चीज ने मोटिवेट किया कि कॉल की जाए?
1: जी वो मैं कल से ट्राई कर रही थी, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था, फिर मैंने कहा, दिल ने कहा कि आपसे बात कर लूं।
0: ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताएं प्रोग्राम सुनती है, किसके तावन से प्रोग्राम है?
1: जी बिल्कुल, सुपर वाइटिंग क्रीम के तावन से प्रोग्राम है, और प्रोग्राम है जिंदगी गुलजार है, आज ये हमारी सीटी सी आज ये रुखसार है।
0: अरे जी क्या बात है, और दिल खुश कर दिया आपने मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे हमें?
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
0: सुना दें फिर,
1: आप अपनी चॉइस का गाना बताएं, वही सुनाएंगे।
0: मैं बताऊं, मैं तो मतलब कि गाने सुन सुन के इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूं, अब गाने प्ले कर करके जल्दी से मुझे कोई गाना अच्छा सा याद भी नहीं आता।
1: तो सारा दिन आप ही गाने सुनते हैं जो आप प्ले करती हैं।
0: हाँ, ये है कि आप लोग मुझे सुना सकते हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी अच्छा सा सुनाएं, वो मैं आपके लिए प्ले करूंगी।
1: जी बिल्कुल, हम सुनाएंगे आपको शमन अली निराली का गाना।
0: ओके सुना दें।
1: दिल चाहे चाहे तुझे के हो यार कितना, मुझे तना की याद है।
0: वेरी नाइस, किसको डेडिकेट करेंगी?
1: जी आपको डेडिकेट है, और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सॉन्ग जो है सभी सुनने वालों को ही डेडिकेट है।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे हुए बलोच, और आपका गाना मैं प्ले कर रही हूँ, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, इसी के साथ कॉमेंट्स को इंक्लूड करेंगे।

जी, और इसी के साथ हम कमेंट्स कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा सैड हो गया गाना, है ना? तो क्या किया जाए, एक और गाना प्ले किया जाए, एक और गाना प्ले करते हैं जी, और इसी के साथ हम कमेंट्स कंक्लूड करते हैं जी। कमेंट्स आप लोगों के बहुत सारे मुझे रिसीव हो रहे हैं, एंड हमें कमेंट किया है जवाब मोहम्मद बच्चन ने, फूल भेजे हैं जी, और हुसैन मला हमें सुन रहे हैं, थैंक यू हुसैन मला। अब्दुल जी कैसे हमें सुन रहे हैं, इसके अलावा रशीद खोसा हमें सुन रहे हैं, इसफार अली शेख हमें सुन रहे हैं, किशोर कुमार कहते हैं गुड मॉर्निंग, उफ अल्लाह सांस तो ले रही हूँ। हाली सुल्तान कहती है हे स्वीट आरजे, हे हाली सुल्तान। इसके अलावा इसरार अली शेख कहते हैं नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, ओके थैंक यू। सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छी है और जो प्रोडक्ट्स की हमारी कलेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कलेक्शन हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है इसमें से, और सुपरमार्केट के प्रोडक्ट्स को बाय करना है, एंड उसके बाद इसको अप्लाई करना है, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है, और स्किन केयर रूटीन में ऐड करके उसको बेहतर से बेहतर बनाना है, और अपनी स्किन को बेहतर से बेहतर बनाना है। और वो तमाम तो लोग जिन लोगों को पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा मसला है, आजकल टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, छाइयां आ गई है चेहरे पे, तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम। सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम को यूज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा, उसके बाद सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम जो कि एंटी एजिंग है, डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, पिगमेंटेशन और छाइयों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगी, क्योंकि वाइटामिन सी एक्स्ट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद है और वो पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर इसके रिजल्ट को भी डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं सो दैट आप यूज करेंगे सुपर वाइट की वाइटामिन सी फेस वॉश को भी, और फिर देखेंगे कि आप कितने किस कदर खूबसूरत होते चले जा रहे हैं, और साथ साथ जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल करवाने के लिए सखर और लाड़काना में 0314775462। इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करेंगे 0370256831। ठीक है, इसी के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक प्लस न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-90-244।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125-25786।
0: जी हा, 2315-25-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम और ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड प्रोडक्ट बाय अक्सा कस्मरे। प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और इसके अलावा जो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से, सिंपली मैसेज करने के लिए 8881 पे आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट करें हमारे फेसबुक पेज पे जो कि है GLR FM 88.8 और GFM 88, ठीक है। इन पेजेस के ऊपर आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलती है जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। आज का टंग ट्विस्टर बताना है जी आपको, और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो बताऊंगी इस गाने के साथ जो कि

हमारी आज का टंग ट्विस्टर है कि टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। ठीक है, ये कहना है और ये कहने के लिए आप लोगों को कॉल करनी है 03000113488 और साथ में सुपर वाइट के प्रदाश और सुपर वाइट से आप हैंड्स एंड फीट फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी। हेल्पलाइन नंबर सखर और लाड़काना वालों के लिए है स्पेशली, तो सखर वाले और लाड़काना वाले डायल करेंगे 0314।

7775 4462। ठीक है, ये नंबर है, और जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 0370256832 0370256832। ये नंबर है मुमताज हसन खान का, और इनसे आप रابطہ करके हैदराबाद में तमाम प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, हैंड्स एंड फीट फार्मूला कैसे तैयार होता है वो तमाम तो लोग जो कि हैंड्स एंड फीट फार्मूला जो कि एक बेहतर फार्मूला अपने हैंड्स एंड फीट के लिए ढूंढ रहे हैं, नकल डार्क हो गए हैं और हाथों पैरों की स्किन जो है बेड रौनक हो गई है, और केयर ना करने की वजह से टैनिंग वगैरह आ गई है, डार्क हो चुके हैं। और सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमारा रंग जो है चिट्टा हो जाए, फेस का भी, हैंड्स एंड फीट्स का भी। और हमारे हैंड्स एंड फीट्स जो है ना हमारे फेस की तरह ही मतलब कि उनका कॉम्प्लेक्शन नजर आए। तो अगर ऐसे ही आप भी चाहते हैं

सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम लेने के बाद आप लोगों ने कोई भी ब्यूटी क्रीम लेनी है, सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेने के बाद, चाहे वो टर्मेरिक हो, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम हो, राइस ब्यूटी क्रीम हो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगती है वो आप लोगों ने लेनी है। और साथ में सुपर वाइट वालों की पेट्रोलियम जली लेनी है, ठीक है। ये दोनों वेरियंट्स आप लोगों ने लेनी है और लेने के बाद जो उसकी क्वांटिटी की बराबर ही आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली की जो क्वांटिटी है वो लेनी है। और लेने के बाद दोनों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि दोनों चीजें आपस में यकजा हो जाएं। और जब दोनों चीजें आपस में यकजा हो जाएंगी तो आप इनको स्टोर करके रख लें, स्टोर करके रख लेंगे। एंड फिर इसको जो है रात को सोने से पहले अपने हैंड्स एंड फीस को अच्छे तरीके से वॉश करके, साफ सुथरा करके आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सो जाना है, सोने के बाद सुबह उठ के फिर से फेस वॉश करना है, इसको भी इसी तरीके से वॉश करना है, हैंड्स एंड फीट्स को भी इसी ही वॉश करना है। तो डैड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।

0: करना है आप लोगों ने, और अब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हैंड्स एंड फीट फार्मूला तैयार होता है, एक बेहतरीन किस्म का, जो कि सुपर वाइट वाले अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए तैयार करते हैं सुपर वाइट की जो है प्रोडक्ट। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी आज का टंग टेस्टर। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, मैं शो वही लोग कॉल करें जो टंग टेस्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: SRH
0: टंग टेस्टर सुना है?
1: ऑप्शन को सुना है लेकिन बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है।
0: बोलने में अजीब सा लग रहा है
1: जी,
0: सही से बोलेंगे तो नहीं लगेगा ना?
1: नहीं, पसंद लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, चलें फिर मुझे ये बताएं कि सुपर वाई के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं?
1: बस यही बात है, कभी हर्ष पे कभी फर्श पे कभी इधर कभी उनके दर कभी दर पदर। आप ही बताए, यहाँ पर आए या पहले वाले उस पे रहे?
0: पहले वाले उस पे, किस पे?
1: पहले भी एक प्रोग्राम होता था आप,
0: बिल्कुल, और वो आपने अब तक तो मतलब यूज कर रहे हैं अब तक वो वाले भी?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब आप ये भी यूज करके देखें, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप पहले यूज कर रहे हैं आप वही वाला लें। आप इसकी इसके जो है फेस वॉशेस भी यूज कर सकते हैं, आप इसकी पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद जब आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो आप बाकी सारे प्रोडक्ट्स खुद ही यूज करेंगे, है ना?
1: ठीक है,
0: ऐसा ही है, ठीक है। और कुछ कहेंगे? अच्छा सा,
1: अच्छा सा बस यही है कि आपके प्रोग्राम में कंपेयरिंग है ना कुछ खुल के सामने आई है, मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हो और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे चलाते हो।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी।
1: और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे चलाते हो।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी। और

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 रंग जी खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जी खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरन खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट, उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
4: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार।

0: टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं फुल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ाम माणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Cheuna.
1: Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आज जो रुकसा है आपको मेरे साथ पूरी पूरी बजे तक का है और जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स और वो तमाम तो लोग जो कि जिनको नहीं मिल रही है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो वो हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करेंगे. हेल्पलाइन नंबर है जी 03147544426 सखर और लाड़काना वालों के लिए. ठीक है, तो आप लोग इस पर एटलीस्ट कॉल करेंगे. ठीक है, तो कॉल जरूर कीजिएगा. प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मालूम चाहिए हो आपको तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पे आपको मिलेगी एंड आप शो का फीडबैक भी इस हेल्पलाइन नंबर पे दे सकते हैं. इसके अलावा जो हैदराबाद वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो है 03702568321. ठीक है, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है जिनको आप लोग डायल कर सकते हैं और सुबह आके प्रोडक्ट जहां जहां पे नहीं मिलते हैं अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे एंड देन आपको मिल जाएंगे. सो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज तैयार करने के लिए आप लोगों को चाहिए सुपर वाइट के ब्यूटी क्रीम्स. तो सुपर वाइट का एक और फॉर्मूला जो कि आप लोग तैयार कर सकते हैं. सो आप लोगों ने लेनी है एक अगर सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम एंड देन उसके साथ आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट एंटी एक्ने क्रीम एंड उसके साथ लेना है सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. ठीक है, आप लोग इन तीनों चीजों को जो है एक जार में ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे देन आप इसको इतना मिक्स करें कि ये आप मतलब कि एक जान हो जाए. हमें इनको स्टोर करना है. स्टोर करने के बाद रख लेना है. स्टोर करके रात को सोने से पहले आप इसको अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद फॉर्मूला अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड कुछ ही दिन में पहले ही तीन दिन में वाजे फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है, स्किन डल है, स्किन डार्क है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल स्किन के ऊपर. जो ऑयल आ जाता है आप बाहर जाते हैं पोल्यूशन डस्ट की वजह से ऑयल फ्री स्किन नहीं रह पाती आप लोग ज्यादा ऊपर. तो स्किन से ऑयल को खत्म करने के लिए आप लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को. और अगर फेस के ऊपर एक्नी है एक्नी को खत्म करेगा, पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, आपके जिन को फेयर करेगा. सबसे बड़ी बात फेयरनेस ब्राइटन अप स्किन होगी और आप देखेंगे पहले ही तीन दिन में इससे वाजे फर्क आपको मिलेंगे नजर आएंगे. ठीक है, साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे जी एंड कमेंट्स को हम एंटरटेन करेंगे एक गाने के साथ और वो गाना मुझे अभी अभी नजर आया था.

0: ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं आगे और प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग. और वो जो एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो हम प्ले करेंगे और आगे जाएंगे.
1: दिसे कुल्ली यार दी.
0: ओके, ये वाला गाना है जो कि मैंने प्ले करना है. एंड दिस सॉन्ग इज बाय द विनर ऑनली नबील शौकत. जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स.

song aur song ke saath saath program ka time bhi bahut limited hai aur taqreeban khatam ho chuka hai ji and isi ke saath hum finally lenge aapse ijazat aur inshaallah meri aapse chit-chat hogi ab kal on same time same channel same show with the same RJ suna mat bhuliyega zindagi gulzar hai apna bahut sara khayal rakhiyega aur jaati jaati wahi baat ke khwab dekhne ke liye सोना जरूरी है ख्वाब पूरे करने के लिए जागना इससे ज्यादा जरूरी होता है लिसन टू बट थिंक हाय सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट टेक केयर गुड बाय बामानी खुदा अल्लाह हाफिज़

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: पहुची वो गवर्नर ए बन से अलग मुलाकातू भी कद वफाकी वजीर अमीर मकाम की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात केपीए के सूरत हाल से तफसीली गाल क्यों
5: केपी में एमरजेंसी लगाने वारो फैसलो आसान न हो पर हुकूमत वट बो को ऑप्शन भी न हो माजिए में भी धरण जरिए मुल्क मैशियत के नुकसान पहुंचाया वो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में हर सूबे के पैंजो किरदार अदा करणो है।
4: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर ए सलमान अकरम राजा के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात केपीए में इमरजेंसी गवर्नर राजबाद सूरत हाल से गाल वफाकी हुकूमत के कदम खिलाफ आला अदलिया से राबतो करण से मुशावरत
5: सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई जा अठ अगवान हिफाजती तहवील में आहिन केपीके पुलिस मूजिब सुहेल आफरीदी केपीके असेंबली जो स्पीकर सलीम सवाती जुनेद अकबर ए बया पुलिस की हिफाजती तहवील में आहिन पुलिस अलर्ट आहे कंखे भी कानून हथ में खणन न डींदी।
4: पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का दहशतगर्द के सहूलतकारी खत्म करण जो मुतालबो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का रुगो एक ही मुतालबो है तो दहशतगर्द के सरपरस्ती मदद बंद करे पाकिस्तान खिलाफ पांजे सरजमीन जो इस्तेमाल रोके खिते में अमन लाए पाकिस्तान के कोशिशों के रद्द नथो करे सके पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त न कया वेंदा।
5: सऊदी अरब के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हमलो पाकिस्तानी शहरी शहीद जाना जाना जख्मी होसी मलेशिया के हमलन सबब शाह खालिद ए शाह फहद एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी के शहीद थियण की तस्दीक कर छी गुजरियल डी शाह खालिद एयरपोर्ट से हमले में अमेरिका सऊदी अरब बंग्लादेश उर्दन मिस्र ए फलस्तीन जहा 12 शहरी मार वया हुआ 309 जख्मी थिया हुआ।
4: आबना रम्स ते अमेरिका ईरान में 1.5 लाख बरकरार कतरी साल से भी अग बराई कर न सघी आबना रम्स में तेल बरदार बेड़न ते हमला जारी अमेरिका भी तहरान के बहरी नाकाबंदी वधीक सख्त कर छी ईरान 7 शर्तन ते अमेरिकी जवाब के नाकाफी करार डेई छो ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसन रज़ाई है तो अमेरिका 7 शर्तन में कुछ के कबूल किया है वाशिंगटन जो मजमू जवाब तहरान लाए नाकाफी है।

0: गर्दन जी चुरपुर ते भी नजर आहे।
1: प्रियालो जे कच्चे में माउ ए धीउ कतल फैज मोहम्मद बिंडो थाने जे हद गोठ बुरड़ा नारे जो में हथियार बंदन सनम ज़ाल एतबा नारे जो संदस धी सलमा के कतल कयो। पुलिस जो चवण आए त मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स एतबा नारे जे कतल जो इल्ज़ाम हो। वाके बाद माउ धीउ टिन सालन खां गुम हुयूं, गुज़िरियल रात भाउ वट आयूं त खेन कतल कयो वियो।
0: दोदापुर वेझो मोहम्मदपुर वारे इलाइक़े में जखाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में हलंदड़ पुराणे तकरार तां हथियारबंदन फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ गुलाम हुसैन जखाणी भरिसां हथियारबंदन हमिलो करे नौजवान शामीर जखाणीअ खे क़तल कयो। वाके बाद धुरिन में छिकताण तेज़ थी वई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट
8: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर सईद,
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: याद रखंदा डॉक्टर अतीगा सईद हीअं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रख, बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे

0: नी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंद। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
6: जी हा, 231-25-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज।
7: लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आप हमेशा के लिए हसीन बन सकते हैं। कई मरतबा तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए सही है और कौन सी चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम सही वाले प्रोडक्ट्स नहीं परचेज कर पाते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई मार्केट में तो सही प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, तो अगर आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ये खास बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से काम करते हैं कि ना सिर्फ आपके चेहरे को जो है ना वो प्यारा खूबसूरत बना देते हैं, बल्कि आपके चेहरे पर ये भी इजाफा आ जाता है कि आपकी जो खूबसूरती है ना वो हमेशा मेंटेन रहती है। यानी कि आपके चेहरे पर जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी, रिंकल्स थे, क्रेकल्स थे, या फिर बहुत सारे ऐसे मसले जो कि आप उन्हें फेस कर रहे हैं, काफी टाइम से सफर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से और कैसे आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम की वजह से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो बढ़िया जनाब, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे तो पूछिए कि कितने अच्छे वाले जो रिजल्ट्स हैं ना वो लोगों को मिलते जा रहे हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें होने वाली है, और ढेर सारी बातों में जाहिर सी बातें आप लोगों के साथ फन करेंगे, आप लोगों को मजे मजे के गाने सुनाएंगे, आप लोगों के मैसेजेस होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगी जनाब, वो भी रज के। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा है जनाब, आप लोगों के साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताइए और अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बता दी जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंतकी हालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मोड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का। और यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, तो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेल गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाने का काम करेगी भाई साहब ये सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ, तो बहुत प्यारा सा कलाम हम आप लोगों के साथ सुन लेते हैं जो कि ज़ेन और ज़ुहैब की आवाज में होने वाला है। आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक प्रोग्राम वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

की दीवारें बोलने लगे, तो मुझे बताएं कि आपके घर का माहौल कैसा होगा। फिर आपने जो ये चुप चुप के लोगों के बारे में बातें करी हैं, दीवारें बोलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है सोचो कितने फसाद होते। तो आप मुझे बताएं कि आपके घर का फिर माहौल कैसा होने वाला था। उनके अलावा अगर तहसने प्रोग्राम में शामिल आए हो बुध पया पहली मरतबा रोजाना, या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं, तो जनाब अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। कैसे बनेंगे बताते हैं ना। अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। उनके अलावा अगर तहसंग फेसबुक पे बुधन चाहिए था तो जी लाड़काना FM 88.8 असो पेज है जनाब। फेसबुक जो आई जदी तुम सर्च कदा जी लाड़काना FM 88.8 तक असो पेज आराम से मिली वो पेज से अचो बाबा पेज से तक असि प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिली वी जैसे तुम लाइक कदा कॉमेंट कदा शेयर कर छींदा। पोस्ट के लाइक कॉमेंट और शेयर ये टई चीजों कदा कर एक भी अगर इन में चीज स्किप कई ना वो कुटकी दीदी मैं पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को मेंशन कीजिए और सबको बताइए जनाब कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है तो छा चुकी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये कमाल हो चुका है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप मर्द हजरात खवातीन हैं या फिर ऐसा वाला सीन है कि भाई आप लोगों की स्किन खराब है सेंसिटिव स्किन है कॉम्बिनेशन टाइप है या आप ऐसा वाला सीन है कि कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में लगा नहीं पाते ट्रस्ट नहीं हो पाता आप लोगों से कि भाई आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए बहुत सारे धोखे खा लिए हैं लेकिन ऐसा है कि अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये प्रॉपर इस तरह से तैयार रखी गई है कि आपकी हर स्किन के ऊपर ये फिट हो जाएगी क्योंकि सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है यानी कि ऐसे आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला ईजाद किया है तो अब आपकी बारी है कि आप इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला भी है यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई फेशियल कराया हो। तो बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी बातें जो आप लोगों को बतानी है मैंने लेकिन ये वाली बात भी है जो कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए आप किसी गाँव से ताल्लुक है आपका किसी सिटी से आपका ताल्लुक है आपके यहाँ अभी तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं पहुंचे हैं नहीं मिल रहे हैं तो आपको नंबर बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता कीजिए और जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 और बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही बई नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से दुनिया जे कहिड़े बि कोने में मौजूद आहे बाबा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करायो अवेलेबल कराइण सां तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो त तव्हां बस वेंदा ऐं परचेज करे ईंदा छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश वञो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो ऐं परचेज करे अचो मूंखे ॿुधायो त तव्हां बि इस्तेमाल कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं तव्हांखे सवाल जो जवाब ॾियणो आहे त अगरि तव्हांजे घर जूं दीवारूं जेके आहिनि भितियूं जेके आहिनि उहे ॻाल्हाइण स्टार्ट कनि त बाबा ॿुधायो मूंखे हाल अहिवाल तव्हांजे घर जो छा सीन हुजे ये जो आप बैठ कर कुंडन कुंडन में वेही करे माण्हुनि जो गिलाऊं कंदा आहियो न पोइ ख़बर पए वा तव्हांखे हाणे ॿुधायो मूंखे सो तव्हां जल्दी असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो हिते तव्हां सां सगॾु मौजूदु आहे तव्हांजा फीडबैक आहे सभ खां पहिरीं अगरि असां ॾिसूं था त असां कॉमेंट मिलियो आहे तारिक भाई जो तारिक भाई सबसे पहिरीं हमारी पोस्ट पर मौजूदु कहते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई कहते हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अब्दुल रहमान बाबू भाई पीर जो गोठ में अच्छा हमारा शो सुनते हैं और पीर जो गोठ में इन्होंने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं तो अब्दुल रहमान यानी कि बाबू भाई जो हैं उनको वेलकम करते हैं और जितने भी पीरजो गोठ में लोग हैं ना वो अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इजीली आप परचेज कर सकते हैं ओके हो गया अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे कहते हैं कुब को फैल गई बात शनासाई की उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने बात तो सच्ची मगर बात है रसवाई की सही बात है और आप हमारे साथ कहते अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सलाम अदर कैसी हो अदा तबीयत कैसी है उठे उठते बैठते खुद हो हाँ बा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र है उठते बैठते खुद है और जैन अली कहते हैं कि जब कोई शख्स आपका मुकाबला ना कर पाए तो वो आपसे नफरत करने लग जाता है ओ यह गाल कही ना कमल जी कहते कि मुस्कुराओ की जिंदगी भी बाकी है।

0: हाओ बाबा मुस्कुरायूं तव्हां बि मुस्कुरायो. अब्दुल गफ़ार भाई वालेकुम अस्सलाम, तव्हांखे चवंदा भली करे आया. मेलसी खां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे, वाह साईं वाह, ख़ुश आमदीद. अच्छा राजा रऊफ अबड़ू हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते आरजे साहिबा कहिड़ा हाल आहिनि, दुआ आहे हमेशा सलामत हुजो, शो वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच रऊफ, तव्हां सां गॾु मौजूद आहियो बाबा, असांजे प्रोग्राम में तव्हां शामिल आहियो, सो तव्हांखे चऊं था भली करे आया. और मोहम्मद ज़माने में सुन रही गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आई स्वीट बुआ जी, ऑसम शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. कामरान खान हमारे साथ है, कहते नाइस शो, थैंक यू. अली रज़ा लगारी गोठ जाम खान लगारी से कहते सिस्टर सिदरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, शो तमाम नाइस है. थर आ जिगर तू प्यार मां छा जाने भाई, सरमन सिंधी मां कोशिश कयां थी तव्हांजा ॾुखिया ॾुखिया गाना हलाइण जी डेडिकेट. अज़हर लगारी आ गुलाम मुस्तफ़ा चालपुर, इमाम बख्श खोखर सिस्टर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत कमाल की है, और सब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सब पूछते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हमसे, क्या बात है, जिनको बताया करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की है, ये भी उनको बताया करें. और एसन आरबाणी के थी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना इस्लाम मदद, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसी आप, तबियत मूड वगैरह ठीक ठाक है ना, मैं भी आ गया ब्यूटिफुल शो में, मौसम भी आज प्यारा है. हाँ भाई आज मौसम की वाकई क्या बात करें, मौसम इधर का भी बड़ा अच्छा हो रखा है, बस बारिश हो जाए थोड़ी थोड़ी सी तो मजा ही आ जाएगा, पैसा वसूल सीन हो जाएगा. अल्लाह किशोर भाई कहते हैं कि आऊं हमेशा पंहिंजी कीमत ठाहिण जी कोशिश कंदो आहियां, छो त अगरि मूंखे.
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अरे न, खुश ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं, तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे, सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट. उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती, हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल.
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी.
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं और क्यों ना हो जनाब, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो आपको तो चाहिए तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कई मरतबा तो ऐसे भी प्रोडक्ट से आपका पाला पड़ जाता है जो कि टोटली आपके चेहरे को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं या फिर एक नहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो होगा ना आपकी खूबसूरती पे इस तरह से काम करता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार ही ऐसे किया गया है कि आपकी हर स्किन के ऊपर ये वर्क करे। यानी कि अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव भी आए, यानी कि काई भी क्रीम तुम्हारा न लगाए सकना हो या नॉर्मल स्किन आ, ऑयली स्किन आ, ड्राई स्किन आ, कॉम्बिनेशन टाइप स्किन आ, तो जनाब तुम्हारा हर स्किन के मथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लगाए सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना तुम्हारे खूबसूरती जला मुकम्मल फार्मूलो है छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है इनके, यानी कि स्किन चार्ज के डॉक्टर्स होता है ना उन्होंने मिली कर तैयार करा था जो को फार्मूलो रखियो वो है तमाम जबरदस्त है, तमाम सेफ आए जिनके तुम इजीली हर स्किन ते लगाए सको था। उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वाइटामिन ई बीट्स आन, माइक्रो बीट्स आन, अल्फा आरबुटीन आ, कोजिक एसिड आ, ग्लूटाथायोन आ, ये सब चीजों एडी थे आन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। ये सब चीजों तुम्हारे स्किन जला केतरियों फायदेमंद आन बिल्कुल तुम्हें बुधाईदी। अगर असा इतनी गाल क्यों था डी स्किन ब्यूटी क्रीम के 2-in-1 फार्मूले की, तो 2-in-1 जो फार्मूलो आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तो बाबा ही तुम जैसे इस्तेमाल करना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम रिजल्ट मिलना ना वो यही मिलना जन तुम कोई महंगो फेशियल कराया है छो तो कई मरतबा ये असा वट टाइम न हों या असा एतरा पैसा अफोर्ड नायू कर सदा तो असा वनू बाबा महंगन महंगन सैलॉन्स में वही कर फेशियल्स कराए अचू तो या फिर तुम्हारी शादी थियण वाली है या कोई अड़ो सीन आ तो तुम्हारे घर में शादी थी रही है तुम चाहो था तो बाबा असि खूबसूरती जो है ना असि खूबसूरती सफा नेक्स्ट लेवल से हली वे असि खूबसूरती 10 गुना ज्यादा वही वे तुम्हारे चेहरे की स्किन सफा ग्लो करें तुम्हारे चेहरे से जे भी प्रॉब्लम्स आने सब दूर थी वन तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसे तुम इस्तेमाल कर सिर्फ ब रातन के यूज में ढो भलो तमाम जबरदस्त रिजल्ट मिली वो। सो अगर तुम ब रातन के इस्तेमाल से एडो जबरदस्त परफेक्ट रिजल्ट हासिल करना चाहो था तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तुम मर्द हसरात खवातीन सभी लगाए सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा मुनासिब पैसन में तुम्हें मिली रही है, प्रीमियम क्वालिटी जो ये फार्मूलो है, प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट है, तुम ट्राई कर दिसो तुम यकीनन ढो सुठो ही प्रोडक्ट लगो जे मानू इस्तेमाल कन पाया बाबा उनके खबर है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम केडी जबरदस्त है केतरो प्रीमियम फार्मूलो फाइनली तुम मिली वो है। पर हाँ इतने जडी तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी अचो तो तुम उन डी स्किन जो फेस वॉश भी वी अचो छो तो जडी तुम क्रीम वो था क्रीम लगाए था तो तुम्हें खपे तो तुम डी स्किन जो फेस वॉश भी ट्राई कर दिसो ये बई चीजों जडे तुम गड लगाइंदा गड ट्राई कर दिसंदा तो तुम्हें खूबसूरती जो ना सफा तुम्हारी मुकम्मल खूबसूरती थी वेंदी तुम्हारी खूबसूरती की हिफाजत भी थी रही ये ना तो तुम्हें खूबसूरती मिली वही अगर तुम प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर छे था तो वह खूबसूरती भी तुम्हें गायब थी वेंदी जी ऑलरेडी बया प्रोडक्ट कहना है। पर तुम जडे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर था वरी थोड़ो तुम ब्रेक दियो था वरी कुछ डी तुम प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर छे था तो वो खूबसूरती तक मिली आवाजी आर भी न खसी बाबा तो तुम जल्दी जल्दी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर वेठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जगह तुम्हें लाइ हर जगह से अवेलेबल कराए छी है। ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश तुम लगाइंदा रहो पैंजी खूबसूरती के बधाईंदा रहो। ओके जी, अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से नंबर्स को नोट कीजिए और नंबर्स के ऊपर राबता करते रहिए क्योंकि जब आप नंबर्स के ऊपर राबता करेंगे ना तो ये आसानी हो जाएगी कि बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश। तो डायल कीजिए 0332738439 बुढ़ी 300 3384 9 बो नंबर आ 0312502597 बुढ़ी 312 5570 9 107 ये बई नंबर्स आज जी तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। आसानी थी वेंदी बाबा तुम्हारे लाइ अवेलेबल करायो ए सोना थी वनो।
सुनने वाली समातों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब बताते जाइए और मुझे बताइए कि अगर घर की दीवारें बोलना स्टार्ट कर लें तो फिर आप मुझे बताएं कि आपके घर का माहौल कैसा हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोगों के पास अच्छी अच्छी जवाब होने वाले इस सवाल के, तो मुझे जवाब चाहिए और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए 888-1 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए। जल्दी से आपके मैसेजेस मुझे ओके जी मिलती जा रहे हैं और आप अपना फीडबैक जो है वो मुझे सेंड करते जाइए। बाकी ऐसा कहते ज्वाइन का हुआ है अलीशा, लिखती हैं कि होंगे लोग दुनिया में और भी हसीन मगर साईं मेरे लिए कोई भी शख्स आप जैसा नहीं हो सकता। साईं क्या बात है आपकी तो। और लिखती हैं कि वो जो मुझे देकर हंसे पाना चाहो रात दिन जैसे, वाह वाह वाह वाह। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर दीवार गालहाइन त फसाद ही छो थियन, छो न थियन फसाद त थींदा न। कहते दीवारूं त सिर्फ घर जा पोल पधरा कंदियूं, सोच अगर मोबाइल गालाए त इहो बि मां सोचो हुयो पर पहिरियां इहो ॿुधाए त दीवार गालाए त छा थींदो। अलीशा कहती है कि तुम्हें देखा तो यू देखा मुसविर हो गई आंखें, अरे वाह। और चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाउ आर यू, हो फाइन? यस आई एम फाइन, आप बताएं कैसे हैं। रेहाना खान हमें सुन रही हैं, रेहाना खान बखर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रेहाना खान बखर से हमें सुन रही हैं तो आपको भी वेलकम इन खुशामदीद। आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकती हैं रेहाना जी। नजीर कोसो भाई बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लिखते हैं कि नींद में तो तुम अपने आप को भी

भूल जाते हो, फिर वो कौन है जो तुम्हारी हिफाजत करता है, बेशक वो तुम्हारा रब है, बेशक बेशक। अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे, कहते हैं कि तेरे साए में खड़ा शख्स गिराएगा तुझे, मैंने ये बात भी दीवार को समझाई थी। अरे वाह क्या बात हो गया। मोहम्मद जमान कहते हैं, अल्लाह पाक जा गरम जो ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम आयु, जो चेहरो चिटो थियो न बॉयज को। हाँ भाई ये बात बिल्कुल आपने सही कर दी है, वरना बेचारे छोकरन जो चाहते छोकरन जलाई हों तो वो बेचारा परेशान होना था, बाबा हाँ ऐसा क्यों। अजकल वरी छोकरन के नौ क्रेज चढ़ो है तो बाबा वन था सैलून से मल सल लगाई पी या फेशियल से इन चीजों का थोड़ा अवॉइड कर बाबा, ये तुम्हारी स्किन जलाई एतरी सेफ ना होंद कोई सुठो कोई मतलब जो सुठो प्रोडक्ट हुए जो तुम पा पाँ हथन से लगाया अलाय कड़ा कड़ा प्रोडक्ट तुम पे चेहरे से लगाने शुरू किया इन चीजों का बचो बाबा, ये अच्छी आदतें नहीं होती हैं। तुम घर वेठे पांजे चेहरे के सफा एड़ो निखार दई सको था जण तुम महंगो फेशियल करायो है, तो ये मल सल का पान के बचाओ तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। ये हमारे साथ गुड आफ्टरनून, हेलो आरजे सदरा मुस्कान जी, आप कैसी हैं, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हैं कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, योर टॉपिक आंसर, सच में आप दीवारों से बातें करते हैं। अरे वाह चाचा की तो क्या ही बात है भाई। चले यहाँ पर और जी हमारे साथ है वहीद वफाई, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है। और फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक कोई राज राज नहीं रहता, बीवी कहती मेहमान के सामने इज्जत रखना और दीवार फौरन बोल देती झूठ बोल रहा है, कल रात तो इसी मेहमान की बुराई कर रहे थे, बिल्कुल यही गाल सो घर में किडा फसाद थी वनना अगर ये दीवारों गालाने स्टार्ट करना तो। हिदायतुल्ला कहते हैं कैसी हो मुस्कान, ये सॉन्ग है अच्छा, मैं बिल्कुल तवा जो गानो हलायां थी, तवा लिंक ऑलरेडी शेयर करी छड़ी आए। वासु भाई कहते हैं अदी सजो जवाब पूरा बडी हां घर जो माहौल विनायल होंदो, अदी डिठो वने त जिते किथे भितिन जा कन भरल आहिनि कसम सां, बिल्कुल यही गाल आहे। और चाचा कहते हैं गर्मी कराची में बहुत है, सच में कराची में गर्मी है भाई, आज इधर माहौल थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि हल्का हल्का जो है ना वो क्लाउडी वेदर है तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत जो है ना वो कम हो चुकी है, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल भी कराते जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

रही तो क्या बारे बहुत ही प्यार से गाना एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ प्रोग्राम सुन रही है वाई जे एश एंड टी इज इन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए और प्यारे प्यारे होते जाइए। अच्छा, दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय बेस्ट ब्यूटीफुल आरजे सदरा चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो। मैं भी आ गई शो में, वेलकम तो बनता है जी जी जानी, आपको वेलकम कहते हैं। और लिखती है कि अब सुकून साहे दिल में, किसी की तलब नहीं, जो मिला है वो काफी है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, क्या बात है। अच्छा, गदा हुसैन लिखते हैं कि सिद्रा आज मोहम्मद बख्श खामोश है, पता नहीं क्यों, लगता है उसने भी अपनी दुकान की, अच्छा उसकी भी अपनी दुकान की दीवारें बोलना शुरू कर गई है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अच्छा, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। फहीम भाई कहते हैं कि अगर दीवारें बोलती तो सीसीटीवी की जरूरत नहीं होती। ओ या गाल, इन्हनि जी भी रोजी ते लत लगी वञे। मोहम्मद जमान के थे टॉपिक हमें। मोहम्मद सुमान भाई, आपके तो कहने ही क्या भाई, आपका तो जवाब हमेशा वखरा ही होता है। अच्छा, निसाम मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है जी, आप गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आपको गाना सुना देंगे। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिद्रा केपीके वाला। ओके ओके, हो भी सकता है वैसे। अच्छा, मोहम्मद सलमान कुंभर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते मुझे गाना सुना दे ये सॉन्ग दिलजी वदी वही धक धक आ। ओके ओके, यू गाना हलायूंगा।

सारा हुसैन मना कह दे के बाजी चलें जी, आपकी ये थोड़ी सी शिकायत है इसको जरा हम दूर करवा देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और ये मुसद्दिक अली लगारी हमारे साथ है। मुसद्दिक अली लगारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सिदरा हो या कोई और हो बताएं, क्योंकि आजकल एआई का दौर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं सिदरा ही हूँ। ये वैसे सही बात है, आगे जाकर आपको हमारे भी डुप्लीकेट्स नजर आएंगे, क्योंकि वो हमारी ही तरह बैठकर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। वैसे ये बात आजकल हमें देखने को मिल रही है कि अगर आप किसी की भी आवाज दे दें, वॉइस दे दें, तो वो उसके सॉन्ग्स बना देते हैं या वीडियोस बन जाती हैं। तो आगे होने को तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, हो भी सकती है हमारी जगह पर भी, क्या पता एआई बैठा हो और आप लोगों से बातें कर रहा हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान इंसान होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जरा वायरल हुई थी, एक किसी मुल्क ने जो है ना वो एआई का रोबोट बना लिया था। वो खातून थी बिल्कुल, मतलब जैसे औरतें होती हैं, उसको बिल्कुल वैसे तैयार किया गया था, उसको टीवी का होस्ट बनाया गया था कि वो अब लोगों के इंटरव्यूज करेंगी। उनका ये मतलब एक्सपीरियंस था कि भाई हम देखेंगे ये वाकई वर्क करता है या नहीं। तो उन्होंने जैसे ही उसको ऑन एयर किया, वो किसी एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए बैठी रोबोट खातून, तो उसने थोड़ा मतलब बोला, वो इंग्लिश में बोली, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चाइनीज में स्टार्ट हो गई। तो ये है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इंसान तो भाई इंसान होता है। अगर मशीनों के ऊपर आप कितना ही डिपेंड करें, लेकिन उसके लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ती है। तो ये वो वाली सीन है, आगे दौर ये बिल्कुल हो सकता है। आपने अच्छे से एआई के ऊपर जो है ना वो अपनी ग्रिप बना लेनी है कि आपको एआई आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वरना तो तमाम के खबर ना तकते अलाय चाचा थी सके थो।

0: ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ OT ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।
2: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हाँ 231-525-786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: 3320317.
1: मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा पर मातली नूरियाबाद और लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, इसके बारे में आप लोगों के साथ यहाँ पर बातें होती है, और क्यों ना हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इतनी कमाल धमाल और जबरदस्त प्रोडक्ट है। और अगर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को पता है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई किस तरह से आपकी ब्यूटी में इजाफा लाते हैं और किस तरह से आपकी खूबसूरती का ख्याल भी रखते हैं, आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखते हैं। खूबसूरती हासिल करना, खूबसूरती को मेंटेन रखना, ये दोनों चीजें जो है ना, वो एक इंसान के बस की बात नहीं होती। वो खूबसूरत तो हो जाते हैं लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन नहीं रख पाते, और बहुत सारे उस वजह से आप प्रोडक्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अजीब तरह से आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, अपनी फेशियल्स करवा रहे होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि एक तो आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, दूसरा ये कि आपके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, मुनासिब से पैसों के अंदर आप घर बैठे रिलैक्सिंग माहौल के अंदर अपने लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। नाम आप याद कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना, इसके बारे में आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई साहब मार्केट में वाकई आप लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। कई आप जाते हैं ना मार्केट में, कितनी सारी आपको प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, मुझे तो लगता है कि करोड़ों की तादाद में है। अगर आप ही चाहते हैं कि इतनी सारी भीड़ के अंदर आप लोगों के पास अच्छा वाला सही वाला प्रोडक्ट्स कैसे आए, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आंखें बंद करके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों को मिलेगा जनाब फेशियल के फार्मूले, फेशियल की क्वालिटी। क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं, तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं जनाब, माइक्रो बीट्स हैं, तो ये दोनों चीजें जब ऐड की गई हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसकी रिजल्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि जब आप कोई महंगे से फेशियल कराते ना, चाहे वो 15,000 के हो, 20,000 के हो, तो उससे ये होता है कि भाई उसके अंदर भी यही सेम क्वालिटीज मौजूद होती है, जो कि उसके अंदर भी वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई वाकई क्या हमें ये फेशियल वाले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं मुनासिब से पैसों के अंदर, तो बिल्कुल आपको मिलेंगे। क्योंकि भाई पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को एड किया गया है। क्योंकि आप लोग देखेंगे ना कि भाई प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, लेकिन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है ना, वो कम कंपनीज बनाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है और बड़ी प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो खास बात है, वो ये कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर जो फेशियल की क्वालिटीज रखी गई है, तो साथ साथ ये फार्मूला ऐसा बनाया गया है कि ये स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाले निखार भी मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो फेस वॉश की तरफ अगर हम आते हैं, तो फेस वॉश भी तो भाई साहब हर किसी के जिंदगी की बेसिक नीड होती है ना, हर किसी को चाहिए होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि उनकी स्किन को क्लीन रखे, उनकी स्किन को हमेशा जो है ना, वो जो है ना, गंदगी से बचाए रखे। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, काम से वापस आते हैं घर, तो आपको चाहिए होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें, तो आपके चेहरे पर जितनी भी गर्दो गुबार है, जितनी भी थकन है, ये तमाम चीजें रिमूव हो जाए, आपके चेहरे पर एक ताजगी आ जाए, निखार आ जाए, ग्लो आ जाए, और आपकी स्किन फ्रेश हो जाए, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। बिल्कुल जी, तो हम यहाँ पर डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात आप लोगों को बताएं, तो डी स्किन फेस वॉश जो है, ये भी अब आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि कई दफा तो ऐसा वाला सीन हो जाता है कि कुछ लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा। ये लोग कॉल कर बता देते हैं कि भाई हमारे पास डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है। तो आप कॉल करके उन्हें बताइए कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल कराना बाकी रहता है। क्योंकि हाँ, ये बात है, थोड़ा सा फेस वॉश को ना अवेलेबल कराने में थोड़ा सा डिले करा दिया गया था। तो अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो लाजमी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिएगा। और ये जो डी स्किन का फेस वॉश है ना, ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन का फेस वॉश जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये बड़ा कमाल का सीरम होता है, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और आपकी स्किन को हमेशा क्लीन भी रखता है। तो डीपली क्लीनिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की होनी चाहिए, तो आप डी स्किन फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। ये मर्द हस्ताब भी लगा सकते हैं, खातिन भी लगा सकते हैं, भी है, बच्चों के लिए भी है, एजेड लोगों के लिए भी है और टीनेजर्स के लिए भी है, सबके लिए है जनाब डी स्किन का फेस वॉश। तो लगाइए और अपनी स्किन को जरा अच्छा सा फील कराइए, क्योंकि जब हम अपनी स्किन को अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाते हैं ना तो हमारी स्किन भी खुश हो जाती है। तो अपनी स्किन को खुश रखिए और डी स्किन फेस वॉश के साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी यूज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही फार्मूला है जनाब जो कि आप ट्राई करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं और हमेशा के लिए एक सेफ प्रोडक्ट का। तो अगर आप अपनी ब्यूटी केयर रूटीन को जो है ना नॉर्मल और आसान बनाना चाहते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके ब्यूटी केयर रूटीन में लाजमी शामिल होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के अंदर अवेलेबल कराना चाहते हैं, किसी सिटी किसी गांव से आपका ताल्लुक है, आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो झट से डायल कीजिए 0332738439। तो बैटरी है 7384390। आई बी ओ नंबर आहे 0312502590 7 9012 970। ये बई नंबर साइन जेके तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे, ई ता अवेलेबल कराए सगो था। अवेलेबल कराने जे लाई भी दिसो तमा जे लाई केडी आसानी रखी वई आहे, तमा के बाबा के भी प्रॉब्लम नहीं दी। आई जदी तमा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना तो तमा के खबर पंदी वाकई तमा जे लाई केडा जबरदस्ती क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे जेके वाकई तमा जे लाई तैयार कया वया आहे तमा जी स्किन जो ख्याल रखने जे लाई। छो त डिठो वनी त हर के हर कोई डिजर्व करे तो बाबा उन्हें वट सुठो प्रोडक्ट हो जाए। आई क्वालिटी वारी चीजों त तमा वट मतलब थोड़ी कमी होंदी आहे, असा मानन के जिको आहे सिर्फ एकड़ो ब्यूटी प्रोडक्ट न था मतलब उन्हें के दसियों, बल्कि तमां के एकड़ो क्वालिटी वारो प्रोडक्ट के बारे बुधायो था। अगर तमां भी कोई क्वालिटी वारो प्रोडक्ट लगाना चाहियो था तो तमां डी स्किन ब्यूटी क्रीम के एक दफा लाजमी ट्राई करे दिसो, ट्राई करे दिसो तमां के खबर पेजी वेनी तो तमां के बाबा एतरो छो बुधायो विंदो आहे। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमां पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सगो था। उनका अलावा तमां सनी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो था, तमां जा फीडबैक सा जे असा के मिलंदा वनन था। आई बिल्कुल तमां जा फीडबैक शामिल प्रोग्राम रख्या वेंदा। अच्छा पैनल ते अचूं था तो पैनल ते खोड़ सारा मैसेजेस मानन जा जमा थी वया, तो पैनल वारा मैसेजेस भी पढ़ना हलंदा सी। और मोरो से हमें मंठार अली ने ज्वाइन किया है, कहते डेडिकेट अली गोहर गडाई सॉन्ग महबूब अली मीरजट, मां कोशिश क्या थी भाई ती पसंद जो गानों हलाए वठंदा सी। मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला महर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम प्यारी भाई, और आपकी पूरी फैमिली डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और आपको बड़े कमाल के रिजल्ट्स भी मिलते जा रहे हैं, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जुड़े जो हमारे साथ, कहते हैं सलाम सिद्रा मुस्कान साहिबा, शो लाजवाब है जवाब, फिर तो घर में रोजाना झगड़ा होगा, खाना पीना बंद हो जाएगा।

अरे भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हाबी बुला थेबू है। आरजे सिद्रा मुस्कान शो तमान जो वेरी वेरी नाइस आए सलाम तमाके, वालेकुम अस्सलाम तमाके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है दिल रुबा बेरिया रोड से, कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी क्यूट सिस सिद्रा जान, कैसी हैं आप, शो आपका नाइस है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज अंदाज बहुत अच्छे है, मैं आपको बड़े शौक से दिल लगाकर सुनती हूँ 8-9 साल से, जब तक दिल करता है आपकी आवाज को अच्छा और आपकी आवाज सुनती हूँ तो सुकून मिलता है दिल को, आपको सुन के एक सुनती हूँ ना एक भी शो मिस नहीं करती हूँ, मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा, नसीब अच्छी करेगा और बदनजर से बचाएगा आपको, आप मुझे याद करती हो बहुत खुशी होती है ऐसे याद करना मुझे, एनडी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ली है अबू लेकर आया है, मैंने अपनी सिस को भाभी को सारी कजिन्स को बोला है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले लो आप सब, लव यू सिस सिद्रा जान। क्या बात है दिलरुबा, आपकी मोहब्बतें देकर कसमे में थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, इतना प्यार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अरे भाई अल्लाह से ताकि खुश रखे मुझे सोनी दिलरुबा, आई तवां जो मोहब्बत हुआ बाबा ये ला कर मोहब्बत हमेशा कायम रहे, आई तवां के दिल से चाहूं था भली करे आया, आई तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे दिसो, आई तवां मुखे बुधाजो तो तवां के रिजल्ट्स के मिला है, हालवा था आबिद भाई बता मिठी आया ना डिस्काउंट में मिले या फिर चूनो लगाए जी। वैसे आबिद भाई बड़ी अच्छे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आबिद भाई के हाथ से आप जितने भी बेरिया रोड वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आबिद भाई की शॉप से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, साथ में आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा वहां से, तो अगर आपको फेस वॉश के बारे में ये चीज है कि भाई हम कहां से मिलेगा अब कहां से जाकर परचेज करें हम, तो आप आबिद भाई की शॉप पर चले जाइए वहां से आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा, उनके यहाँ फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो दिलरुबा फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा ठीक है जाना। ओके जी मोरो से मंठार अली दोबारा से आपने वही वाला मैसेज शेयर कर दिया है, आपको वेलकम कहते हैं, जवेरिया हमारा शो सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, जवेरिया हमें लाड़काना से सुनती है, प्यारी जवेरिया को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं, आप ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं ये तो अच्छा हो गया। मकसूद मलहा हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते आदाब आदाब डी स्किन ब्यूटी, मुझे मास्टर मंजूर का गाना सुनाना हाजिर साईं, बिना करी गाने की फरमाइश मतलब थोड़ा कम ही माण्हू कंदा आहिनि, गाने जी फरमाइशूं घटि कंदा कयो बाबा, ऐं ये हमारे साथ कहते सिद्रा जी आदाब, दीवारें बोलती तो शायद तन्हाइयों का अजाब कुछ कम हो जाता, मोहम्मद शरीफ कुंभ खां असो प्रोग्राम बुधन पाया, इहा ॻाल्हि तव्हां वैसे सफ़ा सही कई, जेके माण्हू तन्हा हूंदा आहिनि उन्हनि जो पर इहो मसलो जेको आहे न हल थी वञे, हा त उन्हनि जे लाइ दीवारूं ॻाल्हाइनि हा त उन्हनि जे लाइ एंटरटेनमेंट जो ज़रियो हुजनि। प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, इंजॉय कयो असांजो प्रोग्राम, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल बि कंदा रहो।

अच्छा ही गानो गदा भाई के डेडिकेट बने थो। गदा भाई चयो मुखे कोई शादी वारो गानो बुधरायो, शादी वेचारे जे थे कोन पई, अगर शादी करण चाहिंदा त कोई न कोई मसलो थींदा, उन्हनि जी शादी जेका न रुकजी वेंदी आहे। सो अला कंदो तव्हांजी शादी थी वेंदी, पर उन खां पहिरीं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण शुरू कयो। ऐं ही गानो तव्हांखे डेडिकेट आहे।

सिंधूरी क्रीम डे उहा क्रीम डे जंहिंजे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो आहे इहा निशानी अथसि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके वीचारा पढ़ियल न आहिनि अनपढ़ियल जेके भाउ असांखे ॿुधनि पिया भेनरूं असांखे ॿुधनि पियूं उहे तव्हां पंहिंजे लाइ इहा निशानी यादि रखो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे दॿी जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो आहे समझो था इहा निशानी आहे तव्हांजे लाइ जीअं तव्हांखे कोई दुकानदार जेको आहे उहो बेवकूफ़ न बणाए सघे ऐं तव्हां बसि वञो ऐं सही प्रोडक्ट परचेज करे अचो अच्छा चाचा कहते कि सिद्रा बेटा इंसान भी अजीब है कभी बहुत सी बातें करने को दिल करता है और कभी मुंह ही नहीं करता जैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ कहूँ वैसे आपको कितने मैसेजेस करता हूँ तंग करता हूँ बट आज अजीब कैफियत है होता है ऐसा कभी कभी होता है और ये वैसे आप कोशिश करें वो तमाम चीजें जो है ना अपने अंदर दिल में मत दबा के रखें जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं जो आपके तकलीफ का बायस बने लोग हों या चीजें हों या बातें हों उनको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा स्पेस में रखा करें सुकून में रहा करें क्योंकि आपका मेंटल रिस्पांस जो होता है ना मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो ठीक होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए सारी चीजों से ये चीज मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है आबिद ब्रोही हमें सुन रहे हैं हाय जी गुड शो आपका बहुत शुक्रिया और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं कि ज्यादा कॉमेंट्स करने का अरे भाई ज्यादा कॉमेंट्स ऐसा है कि फिर दो तीन कॉमेंट्स कर दिया करें रमेश ठाकुर हमें सुन रहे हैं सुल्तानबाद से ओके जी आपको भी वेलकम हो गया अबू हनीफ आपने गाने की फरमाइश कर दी है और मुझे लगता है ये वाला आपका गाना होगा ओके जी बिल्कुल ये मैं सुन रहे हैं कहते हाय जफर खत्ती बाजी फर्स्ट मैसेज है मेरा जफर भाई आपको दिल से वेलकम कहते हैं आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करके देखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दी है अगर नहीं भी मिल रही है तो नंबर बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राबता कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाए।

ओ गिरी क्या बात है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आवाज से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अर्स मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, कहते लाजवाब कंपेयरिंग लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू प्यारा भाई। जेकब आबाद में मिले थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाला वाल तो अच्छा। सुमाटो गोपाल कहते हाय अस्सलाम वालेकुम, अभी लाड़काना यूनिवर्सिटी में पेपर करके आया हूँ। आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम इन कंपेयर सिटी, वेरी नाइस वॉइस डियर, थैंक यू वेरी मच। आपने गाना भी लिख दिया है, गाना भी लगा देंगे और इनका अलावा ओके गदा भाई बढ़िया हो गया भाई, आप खुश रहा करें ठीक है। और अली गुल हमें सुन रहे हैं गोठ सोनवा खां, अली गुल चांडियो, आकिब गुल चांडियो, गुलाम फरीद चांडियो साईं, तवा के बुद्धि रहा आयु, थैंक यू वेरी मच भात आज मोहब्बतू एंड तवा के चौदह भली करे आया। चाचा फेसवॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम आए, ये जो सीरम हों डो स्किन फायदेमंद आए, ट्राई करे डिजो। अली डना कश्मीर से हमें सुन रहे हैं भाई को वेलकम हो गया। तारिक भाई कहते हैं कि हमादुल्ला बिरोही आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं हैदराबाद से। ओके जी हमादुल्ला बिरोही भाई को भी वेलकम कह देते हैं। किशोर भाई लिखते हैं कि सोच रहा हूँ उसे तोहफे में पायल दूं, जब वो चलेगी तो मेरा इश्क, हाँ जी मेरा इश्क गूंजेगा, क्या बातें। अच्छा हिदायतुल्ला ये वाली बात थी। और नजर मोहम्मद भट्टी भाई में मटियारी से सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला कहते हैं कि शल्ला बचे लेकिन बचना मुश्किल है क्योंकि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाता है ना, तो बचना मुश्किल है सही बात है वैसे।

ओगरी तां ही प्यारो गानो एंजॉय कयो गाने का फोरन बाद ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे वापसी जल्दी मोटी तमा ईंदासीं तमा करे ने मुंहिंजो इते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुश ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 वारनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं 4 वारनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी, खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
9: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
10: Oh,
5: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
11: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 GFM 88 नेटवर्क ते
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
12: सुनते रहो GFM 90.4
13: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
14: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
13: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
14: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
14: 03132525786
13: जी हा 231-25-25-786
14: GFM

अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हो और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है जी, तभी तो इतनी खूबसूरती आपको मिली है ना, और ये कमाल बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा पर माथिली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ मौजूद है। अच्छा दादा हुसैन लिखते हैं कि दिल जी वधी वही धक धक आ छो जो मुंडी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई। ये आपने बहुत अच्छा किया।

नॉट बैड, गाना बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भूरल शर हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको कहते हैं खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शुक्र है तुम आरजे हो, वरना ऐसे सॉन्ग दूसरे। हाँ ये बात है, बस तां सबनी जो ख्याल करनो पवंदो आहे। किशोर भाई कहते हैं कि भूखे मर जाएंगे मेरी कब्र के कीड़े भी, कुछ इस तरह से खाया है तेरी मोहब्बत ने मुझे। आई लीड़े, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आप ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, उससे ये होगा कि आप खूबसूरत हो जाएंगे, फिर आप खुश भी हो जाएंगे, फिर आप खुश होंगे तो समझ लीजिए सब सेट है। और खूबसूरती को अगर आप मजीद निखारना चाहते हैं, खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा खूबसूरती ऐसा होता है ना कि खूबसूरती हर किसी को चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, अगर जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोगों के लिए खूबसूरती चाहिए होती है। लेकिन खूबसूरती के मामले में अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं बताए जाते, तो सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता, तो फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सही वाले प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसा कोई सी नहीं है, सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको बता दिया जाए और सही वाले रिजल्ट्स अगर आपको मिलते रहे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतने अच्छे से आपके चेहरे पर वर्क करती है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं, तो आप लोगों को खुद ही एहसास होता है कि आप कितना कमाल का जो है ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए, मर्द हजरात खवातीन सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ये भी चीज जरा जहन से हटा लीजिए कि भाई हमारे चेहरे पर सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप लगाइए तो सही डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप सब लोगों के चेहरे पर सूट करने वाला प्रोडक्ट है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो।

क्या समझे फिर। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाली समाधान बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर से जाइए और नाम लेकर तलब कीजिए। नंबर्स बाकी आपको बताते रहेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिनके ऊपर आपने रब्ता करना होता है। कॉल करके बस उन्हें ये कहना होता है कि भाई साहब फला जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा शाय हैं या फिर आपको ये लगता है, अच्छा हाँ लड़कियां खासतौर पर ऐसा होता ना कहती है भाई हम लड़कियां हैं हम नंबर के ऊपर रब्ता नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे आपके भाई हैं आपकी अब्बा जान है तो उनके नंबर्स के ऊपर से रब्ता कीजिए। उनको ही बोलिए कि भाई साहब या अब्बा जी आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, उनको बोलिए कि फला फला जगह पर जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, तो वो अवेलेबल करा देंगे। आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, उनको बताइए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कहाँ कहाँ पर जरूरत है। और उनके अलावा असाई टीम माशाल्लाह इलाही एक्टिव लगी पई है, तवाजे कॉलिंग के इंतजार में आए जनी तवां कॉल करना था तवां जे करीबी जनरल स्टोर से जल्दी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए छड़ींदासीं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटमिन ई बीट्स आहिन माइक्रो बीट्स आहिन, ये तवाजे चेहरे ते जेको आ फेशियल वारो निखार आणे छड़ींदा। छो तो वाइटमिन ई बीट्स ए माइक्रो बीट्स आहिन ये जदे जे भी प्रोडक्ट के अंदर एड कया वेंदा तो उन प्रोडक्ट की जेका रिजल्ट आ ना वो 10 गुना वधी वेंदी आहे। जेके महंगा महंगा तव्हां फेशियल्स कराईंदा उन्हनि जे अंदर भी बिल्कुल वाइटमिन ई बीट्स ए माइक्रो बीट्स एड कया वेंदा आहिनि, तॾहिं तव्हांखे एॾा सुठा रिज़ल्ट मिलंदा आहिनि। पर हाणे हिननि सीज़न खे थोरो साइड ते रखो ऐं तव्हां घर वेठे मुनासिब पैसनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं सफ़ा वी आई पी थी वञो। अहिड़ा ॼण तव्हां खां महांगो फेशियल करायो आहे पर तव्हां इहो सिर्फ़ पाण करे सघो था, छो त तव्हां पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करण जे तरीक़ेकार बि बहुत ज़्यादा आसान आहे। आपने ऐसा करना है, सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश जो है न उसे अपना फेस वॉश कर लेना है, रात के टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। और अपना फेस वॉश करने के बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लीजिए, क्लीन करने के बाद फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से लगाइए, ठीक है। और मसाज नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और इस तरह लगाइए कि क्रीम आके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। फिर आप पूरी रात सो जाइए, सुकून की नींद कीजिए, सुबह उठकर दोबारा से फेस वॉश कीजिए। जब आप दो रातें मुकम्मल ये प्रोसेस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो रातें लगाइए, दो रातों में आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल रहे हैं और ऐसे रिजल्ट जो कि भाई बिल्कुल सेफ है आप सब लोगों के लिए। आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

ये बात है, वैसे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो चुका है, नेटवर्क की वजह से जो है ना लोगों के शायद हमारी पोस्ट भी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप हमारी पोस्ट को शेयर मार दिया करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करें, ऐसा ना हो कि आप कमेंट में शेयर का स्टिकर ही भेज दें। वैसे ये पोस्ट पर मेरे ये अच्छा होता है कि आप स्टिकर्स नहीं सेंड करते, क्योंकि जब स्टिकर्स वाला मसला हो जाता है ना, फिर आप लोगों के कॉमेंट्स ऊपर चले जाते। मेरी माशाल्लाह जो लिसनिंग है ना, बड़ी इंटेलिजेंट लोग है, तो आप अच्छा सा एक प्यारा सा कॉमेंट कर देते हैं। बाकी तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी यूज कर रहे हैं। इस साथ अली शेख कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ स्टार, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है कि आप बात? चाचा कहते हैं सैडी लास्ट लिंक, ओके चाचा। और अदो कहते हैं कि एआई म्यूजिक एड़ो ठाहींदो आहे सफ़ा मस्त, सही था चो, सही था चो। कहते हैं कि अदा अॼु नेट सही नथो हले, इन करे उबता सुबता कॉमेंट कयां पियो। खेड़ा खेड़ा का ॻाल्हि कोन्हे का। और जी

पंहिंजी दुनिया जी परवाह करण बि न घुर्जे. दुनिया जी जॾहिं तव्हां परवाह कंदा न, पंहिंजी ज़िंदगी जीअण ई तव्हां छॾे ॾींदा. दुनिया जी परवाह न कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो. फहादली लाशारी बलोच हमारे साथ. वालेकुम अस्सलाम. जी जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई, खुश आमदीद. और मटियारी से खुदा बख्श खास के लिए भी हमारा शो सुन रहे हैं भाई साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं. गदा कहते कि तू जो खेर नाए शो जो तू डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथो लगाई. हा, उन्हनि जो खेर नाए जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथा लॻाइनि, बाक़ी उन्हनि जो खेर आहे जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइनि था. सो बाबा, तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो. फहद भाई कहते हैं कि मैं भी आ गया हूं आपके शो में. बहुत शुक्रिया भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. लास्ट में ओएसटी आप सुनना चाहते हैं. मैं कोशिश करती हूँ आपका ओएसटी लगा देंगे. चाचा कहते हैं आरजे इतनी इंटेलिजेंट है. जी बिल्कुल, सोबत का असर तो होगा ही आप लोगों के ऊपर. वैसे आप अपने कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं?

ईअं बि को भला थींदो आहे छा? तव्हां अहिड़ो ॿुधायां थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हां वठो कोन था, ईअं बि को थींदो आहे छा? अरे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ ॾाढी सेफ प्रोडक्ट आहे। मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, तव्हां दिलि खोले लॻाए सघो था, अखियूं मोटे लॻाए सघो था, ऐं वञो हाणे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। मक़सूद मला कंहिं ते फरमाइश बंद? हांजी, मां कोशिश कंदमि त फरमाइशनि वारा गाना थोरा घटि हलायूं। ऐं उन खां अलावा फहाद भाई कहते हैं कि ज़िंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार से प्यारा नहीं मिलता, जो पास हो उसे ना क्यों वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। ये आपने बिल्कुल सही बात बोल दी।

0: वैसे ये गानो मुखे वणंदो तो भला
1: जते एतबाद करे
0: ओहो ए दुखडी दो ये न थियण घुर्जे अला तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ये मौजूद लाड़खाना से अस्सलाम वालेकुम सिदराबाद जी में मंसूर अली अक्रोश शरीफ से सलाम जोया राशिद शाह को अहमद मुगल का गाना सुना दे आपका शो रोज सुनते हैं शो वीआईपी हो रहा है सलाम सब सुनने वालों को ओके भाई आप और आपके जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है दोस्त उन सबको वेलकम कहते हैं आप स्किन ब्यूटी ये क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ हैं जी सफदर अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मित्रों शहर से देख रहा हूँ सुपर अच्छा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम कहते हैं
1: कहें
0: दाह डिजे

वाह साईं वाह जो भलो गानो बुधो सी एकड़ो लास्ट में ट्रैक आए वो भी बुधी वठना सी मंजूर सखिराणी जी आवाज में आए बिल्कुल जी बिल्कुल और फहद भाई ता सबनी बुधदड़न के

जाम ॾेई छॾिया आहिनि। सो वालेकुम अस्सलाम। लास्ट में थकियल गाना छो लॻाईंदी आहीं? इहे माण्हुनि जूं फरमाइशूं हूंदियूं आहिनि, भला था आहिनि। अॼु त लास्ट में सुठा गाना हलाया आहिनि। और मुसद्दिक कहते हैं, सिस्टर वॾी महिरबानी, ॿुधूं पिया ऐं चओ था अदी अव्हां मान ॾिनो लख थोरा त सिगरेट। अरे भा, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया। मूंखे इलाही सुठो लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां प्यारा प्यारा माण्हू असांजे प्रोग्राम में मौजूदु हूंदा आहियो ऐं वरी तव्हां असांखे ॾिसींदा आहियो त बाज़ी असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं पिया। तव्हांजी वजह सां असांजे प्रोग्राम में रोनकूं हूंदियूं आहिनि। किशोर भाई कहते हैं, अदा तूं शकल जो अलाई कहिड़ो आहीं पर दिल जो बादशाह आहीं। मूंखे फ़ख्र हिन ॻाल्हि जो आहे त आउं हिन बादशाह जे दिल में जग ठाही आहे। इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को। मुंहिंजो प्यारो भाउ जेको आहे उहो भलो माण्हू आहे, पाण बि जेको पाण भलो हूंदो आहे न, सभिनी खे भलो सम्झंदो आहे। जीअं मूंखे वरी सभु भला लॻंदा आहिनि पर जॾहिं असलियत ॾेखारींदा आहिनि पोइ ख़बर पवंदी आहे। अरे बाप रे, हम तो गलत थे। चलो सुठो आयो बे, वक्त ते हर कंहिं असली त वरी ख़बर बि पइजी वेंदी आहे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणूं था कोन, मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा। अच्छा, कॉमेंट में न तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखो हिकु हिकु माण्हू। सही आहे हनीफ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया।

जी जी बिल्कुल सही समझे, चाइना वाली कॉफी। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस वजह से परचेज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके एरिया में नहीं मिल रही, तवां जे गोठन में अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे, त तव्हां जल्दी सां जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदा प्रोग्राम जे अंदरि उन्हनि ते राबितो करे वठंदा कयो। राबितो करण जी इहा तव्हांखे हिकिड़ी मतिलब जेको आहे न सुठी ॻाल्हि लॻंदी, त राबितो करण सां गॾोगॾु तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराया वेंदा ही प्रोडक्ट, चाहे उहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे। सो अवेलेबल करायो ऐं पाण खे जनाब थोरो स्पेशल फील करायो, ऐं तव्हां बि लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जे तव्हां बि सुहिणा थी वञो। अच्छा बाक़ी इहो आहे त गदा यूट्यूब छॾे ॾिनो आहे बाबा, मज़ो न हुयो अलाए अच्छा मुसद्दिक हिते कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके दिलनि में घर करे वेंदा आहिनि, उहे बहितरीन शख़्सियत जा मालिक हूंदा आहिनि। बिल्कुलु भाउ तव्हां सही था चओ, इंसान पंहिंजी इज़त जेको आहे न उहा पाण ठाहींदो आहे अॻिले इंसान जी नज़र में। बाक़ी त ॿियो तरबियत ते बि डिपेंड करे थो त कंहिं इंसान जी कहिड़ी तरबियत थियल आहे, उहो अचे ॿाहिरि माण्हुनि खे ॾिसो मुंहिंजी तरबियत केॾी भली थियल आहे। सो कोशिश कंदा कयो त पंहिंजी तरबियत जेका आहे न उहा सुठी रखो, चाहे तव्हां वालदेन आहियो या चाहे तव्हां जी पंहिंजी तरबियत हली रही आहे, त तव्हां पंहिंजी थोरो इन चीज़ ॾे बि ख़्यालु कंदा कयो। कुझु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके इंसान खे पंहिंजे अंदरि जेको आहे न उहे सही रखणु घुरिजनि, ऐं तव्हां सुठो सलूक कंदा कयो ऐं उमेद रखंदा कयो त कंहिंजी तव्हांजी वजह सां दिलि आज़ारी न थिए। ऐं बाक़ी त इहो आहे त इंसान कॾहिं बि कंहिंखे राज़ी नथो करे सघे, यानी तव्हां कंहिंजे लाइ कुझु बि करे वठंदा पर तव्हां कंहिंखे राज़ी न करे सघंदा। सो हल्की फुल्की कोशिश करे छॾींदा कयो, बाक़ी इहो आहे त माण्हू खे अॻिले

पाण खे राज़ी करण लाइ पंहिंजी जी जान न लॻाए छॾींदा कयो। बाक़ी उहा इंसान तव्हां सां ख़ुशि थिए थो, राज़ी थिए थो, त उहो अॻिले इंसान जो ज़र्फ़ आहे। बाक़ी अगरि नथो राज़ी थिए त बाबा हाणे असां छा था करे सघूं। ख़ुशि रहो तव्हां पंहिंजे ख़र्चे ते, असां पंहिंजे ख़र्चे ते। तव्हां पंहिंजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा, असां पंहिंजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदासीं, ईअं न? सो हिते ई हाणे तव्हां खां वठूं था इजाज़त। वरी मुलाक़ात तव्हां सां मुंहिंजी थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो जो ग़लती थी हुजे त माज़रत करे वठूं था। मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत। अलाह हाफ़िज़, बाबा, आई लव यू। Take care. Allah Hafiz.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: सोयल आफरीदीअ समेत पीटीआई जा 8 अॻवाण हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। केपी पुलिस मूजिब सोयल आफरीदी, केपी असेंबलीअ जो स्पीकर सलीम सवाती, जुनेद अकबर ऐं ॿिया पुलिस जे हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। पुलिस अलर्ट आहे, कंहिंखे बि कानून हथ में खणणु न ॾींदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि दानिश आईटी पार्क बाबति इजलास। दानिश आईटी पार्क इस्लामाबाद खे आलमी मयार जो मर्कज़ बणाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त दानिश आईटी पार्क मनसूबे जो थर्ड पार्टी ऑडिट बि करायो वञे, नौजवान जे जदीद तरबियत ऐं कोर्स लाइ घुर्बल कदम खया वञनि। पाकिस्तान जो अफ़गान सतगर्दनि जे ख़तम करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां रुॻो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पंहिंजे सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके। खिते में अमन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि, अफ़गानिस्तान सां कयल वाइदा पाड़े। सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो। पाकिस्तानी शहरी शहीद 11 ॼणा ज़ख़्मी। हुसी मलेशिया जे हमलनि सबबि शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल। सऊदी एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी जी शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। गुज़िरियल ॾींहुं शाह खालिद एयरपोर्ट ते हमले में अमरीका, सऊदी अरब, बंगलादेश, उर्दन, मिस्र ऐं फलस्तीन जा 12 शहरी मारिजी 9 ज़ख़्मी थिया हुआ। आबना उरुम ते अमरीका ईरान में 1.5 लाख बरक़रार। कतरी सालसी बि अगबराई करे न सघिया। आबना उरुम में तेल बरदार बेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तेहरान जे बहरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान 7 शर्तनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो आहे त अमरीका 7 शर्तनि मां कुझ खे क़बूल कयो आहे। वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तेहरान लाइ नाकाफ़ी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोटिया में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह। जहाज़ में सवार 2 पायलट शहीद। ISPR मूजिब मुश्ताक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद ऐं कैप्टन अब्दुल समद शाह दत्तमाणी। तरबियती जहाज़ फनी ख़राबीअ सबबि किरी तबाह थियो। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां वफ़द सां गॾु चीन में 3 गोर्स डैम जो दौरो। वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली घर सप्लाई ऐं आबी ज़र। सिहत मुराद अली शाह चयो त सियाती तब्दीलीअ सबबि घणो मुतासिर थी रहियो आहे। पाणीअ जो बहितर इस्तेमाल सिंध जे स्ट्रेटजिक तरजीह आहे। सिंधु दरिया मां वॾे मिक़दार में पाणी मिले थो पर ज़खीरे जी सलाहियत महदूद आहे। ज़रई ऐं शहरी घुर्ज लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़खीरे जी सलाहियत वधाइण अणटर आहे। सिंध सरकार चीनी आबी इंतिज़ामिया मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदे वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम, मेमन जाम ख़ान छोरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निकम दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
4: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम, करें कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अलमपोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
12: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारा शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भर हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स नोट, सभिनी मरीज के लेंस चश्मा दवाऊं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों ऐं थाऊं खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयर गुरु।
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12 स्पिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइटर

0: खे पंजरीदार अदा कंदो। हुअ नव खां साढा छह वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक मोबाइल नंबर 03130863163।
1: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ाम मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शनाघर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण
4: जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा 2315-2586
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।
3: अब आपकी फैन बाइट इन

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमे आहिन चावरन जी खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जिंद मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिल बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई और औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आए
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-200
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बच को MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुदीबी हज़मी मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मेडी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंस श्री मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियों मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन

0: असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जिए
1: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल्क कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदू मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओं खड़ी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: कुंडी चयो आहे त डेवलपमेंट ते कुर्बानी ॾेई सघिजे थी, सिक्योरिटीअ ते नथा ॾेई सघूं। वफ़ाक जे इतमाद ते पूरो लहण लाइ 24 कलाक कम कंदासीं। सूबे मां दहशतगर्दीअ खे ख़तम करे तरक़ी ॾियारींदासीं। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त केपी हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हिननि न ॿुधी। सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो। समूरो सूबो पुरअमुन आहे। अवाम दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो चाहे थो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात। केपीअ में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां राब्तो करण ते मुशावरत। बैरिस्टर गौहर सुभाणे पिशावर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदो। सोहेल आफरीदीअ समेत पीटीआई जा 8 अॻवाण हिफ़ाज़ती तवील में आहिनि। केपी पुलिस मूजिबि सोहेल आफरीदी, केपी असेंबलीअ जो स्पीकर सलीम सवाती, जुनेद अकबर ऐं ॿिया पुलिस जे हिफ़ाज़ती तवील में आहिनि। पुलिस अलर्ट आहे, कंहिंखे बि कानून हथ में खणणु न ॾींदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि दानिश आईटी पार्क बाबति इजलास। दानिश आईटी पार्क इस्लामाबाद खे आलमी मयार जो मर्कज़ बणाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो आहे त दानिश आईटी पार्क मनसूबे जो थर्ड पार्टी ऑडिट बि करायो वियो। नौजवाननि जे जदीद तरबियत ऐं कोर्स लाइ बि घुर्बल कदम खया वञनि। पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ख़तम करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजे सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके। खिते में अमन लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वायदा पाड़े। सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो। पाकिस्तानी शहरी शहीद 11 ॼणा ज़ख़्मी। हुसी मलय शाह जे हमलनि सबबि शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी जे शहीद थियण जी तसदीक करे छॾी। गुज़िरियल ॾींहुं शाह ते हमले में अमरीका, सऊदी अरब, बंगलादेश, उर्दन, मिस्र ऐं फलस्तीन जा 12 शहरी मारिजी विया ऐं 309 ॼणा ज़ख़्मी थिया। आबनाय रुम ते अमरीका ऐं ईरान में 1.5 लाख बरक़रार। कतरी साल से बि अघु भराई न करे सघी। आबनाय रुम में तेल बरदार ॿेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तहरान जे बहरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान 7 शर्तनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका 7 शर्तनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तरण लाइ नाकाफ़ी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोटिया में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह। जहाज़ में सवार ॿई पायलट शहीद। ISPR मूजिबि मुश्ताक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद, कैप्टन अब्दुल समंद शहादत माणी। तरबियती जहाज़ फनी ख़राबीअ सबबि किरी तबाह थियो। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां वफ़द सां गॾु चीन में 3 गोर्ज डैम जो दौरो। वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली, घर जे पैदावार, सप्लाई ऐं आबी ज़खीरे ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह चयो त सिंध में मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि घणो मुतासिर थी रहियो आहे। पाणीअ जो बहितर इस्तेमाल सिंध जे स्ट्रेटजिक तरजीह आहे। सिंधू दरिया मां वॾे मिक़दार में पाणी मिली सघे थो, पर ज़खीरे जी सलाहियत महदूद आहे। ज़रई ऐं शहरी घुर्जनि लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़खीरे जी सलाहियत वधाइण अणटर आहे। सिंध सरकार चीनी आबी इंतिज़ामिया मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम, मेमण जाम खान छोरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। केपीए में सिक्योरिटी फोर्सेज जो खारजी दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी। बनून में फोर्सेज जो ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मारजी वयो। सिक्योरिटी जरिए मूजिब बनून में गुजे इतलात दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई कई वही। दहशतगर्दन के चुरपुर भी नजर आए। सिंध हुकूमत एहतजाज जो हक खसे छो। वाद से सिंध रैली का अग कलम 174 लागू किया वो। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब कंदे एसयूपी के मरकजी सदर सैयद जैन शाह चाह है मकानी इदार जरिए सूबाई हुकूमत के गैर फाल करण की कोशिश कई पई वे। मुल्क में सियासी गैर यकीनी वाली सूरत हाल है कंखे भी खबर ना तो सुबाने सूबा ठाया वा तो एनएफसी 1991 वो पानी वो ठा पान मुराद खत्म थी वो। पिरियालो के कचे में माओ ए धी कतल फैज मोहम्मद बिंडो थाने के हद गोठ बुरड़ा नारे जो में हथियार बदन सनम जाल इतबार नारे जो संदस धी सलमा के कतल कयो। पुलिस जो चवण है तो मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स इतबार के कतल जो इल्जाम हो। वाकई बाद मा धी 3 साल का गुम हुई। गुजर रात भा वट आयु तो खेन कतल कयो वयो। दोदापुर वेझो मोहम्मदपुर वारे इलाके में जखराणी बिरादरी के बिंदुरिन में हलदड़ पुराने तकरार तां हथियारबंदन फायरिंग करे एक जने के कतल करे छड़े। गोठ गुलाम हुसैन जखराणी भरसा हथियारबंदन हमलो करे नौजवान शमीर जखराणी के कतल कयो। वाके बाद धुरन में शिकतान तेज थी वही। सिंध
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: सुनिए

0: ब्रश ऐं बीरोनो जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिन ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842 अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
6: जी हा, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जैमे आहिन चारन जो खूबियों।

0: कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे चामड़न जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारहान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियों वेंदियों मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली आसपास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असा वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2101-43-842।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
4: जी हा, 2315-2575-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

समूरो केपी पुरमन आहे। जाली वीडियोस जी खबर पइजी वेंदी आहे। असांजी नीयत साफ़ आहे, हुकूमत लीड कंदी त सुठा नतीजा निकरंदा। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त शहरी दहशतगर्दीअ खां आजपो चाहिनि था। हुननि जो ख़्याल हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बाहियूं ॾींदा। समूरो सूबो पुरमन आहे। 24 कलाकनि दौरान सूरत हाल खे संभालियो। पख़्तूनख़्वा हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी। सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। वफ़ाक़ी हुकूमत जी क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां राब्तो करण ते बि मुशावरत। गोहर सुभाणे पिशावर हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदे चयो आहे त लॉन्ग मार्च ख़तम नाहे थियो। गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ हर फोरम ते वेंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत सुहेल आफ़रीदीअ खे तहवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी। सुदसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त केपीअ में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद सुहेल आफ़रीदी खे तहवील में वरितो वियो आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा काबीना जे ॿियनि मेंबर्स बाबति फ़ैसिलो एडवाइज़री काउंसिल कंदी। सुहेल आफ़रीदी जी क़यादत में पीटीआई हुकूमत टीटीपीअ सां पावर शेयरिंग तहत कम करे रही हुई। गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो आवाम रस्तनि ते नाहे निकितो, जंहिंजो मक़सदु आहे त आवाम ख़ुशि आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि दानिश आई टी पार्क बाबति इजलास। दानिश आई टी पार्क इस्लामाबाद खे आलमी मयार जो मर्कज़ बणाइण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त दानिश आई टी पार्क मनसूबे जो थर्ड पार्टी ऑडिट बि करायो वञे, नौजवाननि जी जदीद तरबियत ऐं कोर्सिस लाइ बि घुर्बल क़दम खया वञनि। पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ख़तम करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके। खिते में अमन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पूरा करे।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3443-842।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सो जनाब यकीनन अवां ताईं असां जो आवाज़ु पहुचंदो हूंदो ऐं जेकॾहिं पहुचे पियो त पोइ ज़बरदस्त असांजो आवाज़ु तव्हां ताईं पहुचे पियो। हिकिड़ो कमेंट कजो, लाइक कजो ऐं असांजो आवाज़ु तव्हां ताईं पहुचे थो या न इहो रुगो थोरो कन्फर्म कजो। सो यकीनन हाणे असीं अवां हलंदासीं अवां साण गॾु उन पासे जितां तव्हांखे ज़बरदस्त क़िस्म जी जेको आहे उहो मूसीकी ॿुधाईंदासीं ऐं मूसीकी ॿुधण साण गॾोगॾु तव्हांखे असां सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदासीं।

जी वेलकम बलिकार, खुश आमदीद। ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम, ऐं सिंधड़ी जी शाम शो में अवां खे यूनिस बकारीअ जो सलाम। जी दोस्तो, महिरबानी कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो, छा असांजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो? जेकॾहिं हा, त तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था। ऐं मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार आहे, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो, ऐं 888-188-81 ते मैसेज असांखे हाणे ई मोकिले ॾियो। यकीन अवां जा ईंदड़ मैसेजिस जेको आहे उहे असांखे मोकिले सघो था तव्हां, ऐं मैसेजिस जेके तव्हांजा पहुचंदा उहे असीं कंदासीं शामिलु। कुझु मैसेजिस अची चुका आहिनि जेके शामिलु कंदा हलंदासीं। ऐं जनाब, मैसेज पहुची चुको आहे। जी हा जनाब, मैसेज अची चुको आहे सजण सांगीअ जी वांड खां। असांखे मैसेज पहुतो आहे गुलाब गुल जो, ऐं मिठी थरपारकर खां। तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी, वॾा वॾ गुलाब गुल, तव्हांजो किशो में असां सां शामिल थी चुका आहियो। अवांखे चवंदासीं भली कार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। नफ़ीस खट्टी असांखे मियापोटा तलार खां ॿुधे पियो। नफ़ीस खट्टी, अवां जी तमामु घणियूं महिरबानी, मोहबतूं ऐं वॾा वॾ जो अवां असांखे जॉइन कयो आहे, ऐं थैंक्यू वेरी मच। भली कार, ख़ुशि आमदीद तव्हांखे चवंदासीं। तव्हां असांखे ॿुधो पिया, ऐं असीं अव्हांखे चवंदासीं भली कार। किरणे कुर्ब असांखे जॉइन कयो आहे हाफिज़ अब्दुल जब्बार सुमरे साहब, ऐं हाफिज़ मोहम्मद हारून सुमरे, अवां जी महिरबानी, अवां असांखे जॉइन कयो आहे पाटार खां। अवांखे बि चवंदासीं भली कार, ऐं थैंक्यू वेरी मच। जी हा मज़े सां भई, अवां जेकॾहिं शामिलु थियणु चाहियो था त पोइ तव्हां असांखे जल्दी जल्दीअ सां मैसेज मोकिलियो। ऐं मैसेज में लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी, पंहिंजो नालो लिखो, ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। 88-81 ते केरु हूंदो असां सां गॾु, हुनजे लाइ अवांजा मैसेजिस बिल्कुलु चैक कयूं पिया। जीअं जीअं अवांजा मैसेज ईंदा, असां बिल्कुलु उन्हनि खे शामिलु करे वठंदासीं, ऐं असांखे ॾिसंदासीं त

ॾींदासीं ऐं वरी कॉल्स में ॿुधाईंदासीं त अॼु असां करे केरु केरु हूंदो जेको शामिलु थींदो। फ़िलहाल हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक आहे जेको क्यू शीट में शामिलु आहे, हुन क्यू शीट जे ट्रैक ॾांहुं पाण खे हलणो आहे ऐं हुन ट्रैक खे ॿुधंदासीं। कमर्शियल ब्रेक हूंदो, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं। त पोइ असां सां गॾु हुजो ऐं छाकाणि जो असां अवां सां गॾु ॻाल्हियूं कंदासीं अवां जूं। जी जनाब, त पोइ ज़बरदस्त ट्रैक तव्हांजे लाइ प्ले कयूं था ऐं ब्रेक वठूं था, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक खां पोइ।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल कर।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमाबुद बिया जीएफएम 88 रेडियो नेटवर्क का ही आहे जीएफएम बातली 90.4 शो आहे सिंधड़ी जी शाम आई यूनुस बकारिये जो सलाम जेकॾहिं अव्हां मैसेज मोकिलण चाहियो था त हाणे ई मैसेज मोकिले सघो था। लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज मोकिले सघो था त पोइ यकीनन अव्हां सां अव्हां जूं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं अव्हां सां अव्हां जूं ॻाल्हियूं रहंदियूं जारी वसारी।

ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਨ ਜੀ ਐਫ ਐਮ 88 ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂਗੇ ਕੀ ਪਈ ਲਗੇ ਯਕੀਨਨ ਤਾਂ ਬੁਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਜੋ ਸ਼ੋ ਅਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਕੇ ਭਲੀਕਾਰ ਚਵੰਦਾ ਸੀ ਛਾਕਣ ਜੋ ਤਵਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋ ਮੇ ਜੈਸਾ ਜੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਏ ਹੋ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਦਾ ਹਲੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਾਂ ਕੇ ਹਾਣੇ ਹਾਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਚੁਕਾ ਹਨ ਸੋ ਜੇਕਰੇ ਅਵਾਂ ਅਸਾਂ ਕੇ ਬੁਧੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਵਾਂ ਬੁਧਾਈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਰੇ ਸਕਦਾ ਲਿਖਣੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਐਮ ਟੀ ਆਈ ਸਪੇਸ ਦੇਈ ਪੈਂਜੇ ਗੋਠ ਐਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਨਾਲੋ ਲਿਖੀ ਪੈਂਜੇ ਨਾਲੋ ਲਿਖੋ ਐਂ 888-181 ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਆਰੇ ਮੋਕਲਿਓ ਗੋਠ ਪਾਬੋਵੇਰੀ ਥਰਪਾਰਕਰ ਖਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾੜ ਐਂ ਨੋਵਲ ਰਾਏ ਮੇਘਵਾੜ ਬੁਧਨ ਪਿਆ ਐਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾੜ ऐं सूरज गुल में गुआड़ बुधन था शंकर लाल अवां जी तमाम घणी महिरबानी अवां खे चवंदासीं भली कार ऐं गोठ हाजी गुलाम खास केली लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास केली साहब ॿुधे थो मिठा माण्हू अवां जी महिरबानी अवां खे चवंदासीं वेलकम ऐं भली कार गोठ पुनू खान पंवर खां असांखे रुस्तम अली पंवर ॿुधे पियो मिठा रुस्तम अवां जी महिरबानी भली कार चवंदासीं तव्हांखे गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे थो अवां जी महिरबानी महबूब नाज़ जलालाणी मुख़्तियार नाज़ जलालाणी आरज़ू असलम जलालाणी अवां जी तमाम घणी महिरबानी ऐं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो अमल के शो लाजवाब आहे तमामु घणी महिरबानी असीं अवां जा शुक्रगुज़ार आहियूं कुर्ब तव्हांजा महिरबानी मैसेज पहुतो आहे जी हा जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे मैसेज पहुतो आहे अस्सलाम वालेकुम इहो मैसेज ज़िले थरपारकर खां मोकिलियो आहे रामचंद कुमार कोहली ऐं गोविंद कोहली ॿुधे थो ऐं अवांजी तमामु घणी महिरबानी कॉमलेश तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब वालेकुम असलाम सदाई सुखिया हुजो थैंक यू वेरी मच ऐं भलीकार थर खां असांखे काठड़ी खां मलक मोहम्मद बलोच शफ़ी मोहम्मद बलोच लिखियो अस्सलाम वालेकुम अवां जी पूरी टीम खे सलाम वालेकुम असलाम सॼी टीम जे तरफ़ां ऐं तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजो थैंक यू ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ॻोठ छुटो सोलंगी खां असांखे अबू बकर सोलंगी ऐं नाज़ नज़र सोलंगी जो मैसेज पहुची चुको आहे वॾा वॾा तव्हांजा ऐं गुलाब गुल मिठी थरपारकर खां ॿुधे पियो ऐं अवांजे ॻोठ आहे सजण सांगीअ जी वांड अवां जी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां सजण सांगीअ जी वांड खे असांखे ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं ऐं अवां खे चवंदासीं भली कार जी जनाब ब्राइट गॾो गॾु ॿुधंदा हलंदासीं माना मैसेजिस बि शामिल सो जनाब उस्ताद अलादीन जूणे जे साहब जी सुरीली सदा हुआ उन गूंजे पई ऐं अलादीन जूणे जे साहब जे ट्रैक खे ॿुधंदासीं ऐं अलादीन जूणे जो वॉइस तव्हांखे यकीन वणंदो आहे तव्हांजी अक्सर फरमाइश ईंदी आहे त क्यू शीट में शामिल कयो त पोइ अलादीन जूणे जे साहब जी सदा ऑनियर क्यू पेपर कुझु मैसेजिस आहिनि जेके शामिल करे वठजी जनाब लुटको मोरी खां मोहम्मद साले लगारी लाल बख्श लगारी बिलावल लगारी ऐं उसामा लगारी जो मैसेज पहुतो आहे अवां जी बि तमामु घणी महिरबानी अवां खे चवंदासीं भली कार सो अवां ॿुधो पिया पंहिंजे रेडियो खे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क मां साण मुखातिबु आहे जेकॾहिं असांजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो तव्हां बिल्कुलु मैसेज मोकिले सघो था लिखो एम टी आई स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-181 ते मैसेज असांखे ॾियारे मोकिलिजो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु आहे असद अली नोतकाणी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे नियाज़ अहमद नोतकाणी बल्कि नियाज़ अहमद निज़ामाणी साहब असांखे ॿुधे थो अवां लिखियो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू मातली शहर खां अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे असीं अवांखे वेलकम चवंदासीं भली कार ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ॻोठ शहीद

सलाम वालेकुम सलाम छो बेस्ट है ताई चयो मा ताज थोराए तो आया थैंक यू भली कार तलहार खा सा मैसेज पहुंच चुको है रिश्ता सिर के मोकलियो है डुकिया वा मोरी का जी जनाब इरफान लाशारी साहब ने ज्वाइन किया है इरफान भाई वानी मेहरबानी हूं तवां जो मवाद लिखे ने वो मिसिंग में हले वे यानी थोड़ो मैसेज पहुंचो बाकी मैसेज तुम कटजी थैंक यू वेरी मच असि अवजा शुक्रगुजार आयो कि बता हाँ जब

वेलकम बैक मजे सामाईन ही आहे जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क अमां शो बुधो पियासी जी शाम आई अमां जे नाम आहिन मोहब्बतूं प्यार ऐं महजैब अमां जो साथी अमां जो आरजे अमां जो पंहिंजो यूनिस बकारी अमां सां मुखातिब आहे अवां ही आवाज़ किथे किथे कनायो पिया जिन जिन इलाइक़नि वाहिणनि वस्तियुनि ऐं बस्तियुनि में असांजो आवाज़ पहुची पियो सभिनी खे वेलकम ऐं भलीकार चवंदे असीं अॻिते वधूं था जंहिंमें अवांजा मैसेजिस जिते जिते असां पहुचनि पिया तव्हां असांखे ॿुधो पिया शामिल कंदा हलंदासीं सो जनाब असांखे झलूरी खां ख़ालिक लाशारी साहब ज्वाइन कयो आहे ख़ालिक महिरबानी अवांजो अवां झलूरी खां असांखे ॿुधो पिया वॾा वॾा अवां जा थैंक यू जो अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं भलीकार चवंदासीं ऐं जनाब यकीन न्यूज़ ना जॾहिं वधंदासीं त ब्रेक न हलंदासीं ऐं उन ब्रेक खां पोइ असां वरी अवां जूं कॉल शामिल कंदासीं पर फ़िलहाल त अवां सां अॼु ॻाल्हियूं जारी आहिनि जेकबाबाद खां शौकत अली जखराणी रहमत अली जखराणी प्रोग्राम खे पसंदि कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं भलीकार चवंदासीं सुहिणा साईं अवां खे जुग जुग जीओ ऐं सदाई सुखिया हुजो शाल अवांजी मुर्क मेरी न थी जी दोस्तो महिरबानो कदरदान जल्दी जल्दी सां टाइप करे वठो MTI थोरो स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में असां सां गॾु हाणे केरु जुड़े थो अवां सभिनी जूं महिरबानी आहिनि जिन जिन पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां टाइम कढियो आहे जेके गौर सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां असांखे ॿुधनि पिया सभिनी जा वॾा वॾा खुदा के वास्ते अब बेरुखी से काम न ले तड़प के फिर कोई तेरे दामन को थाम न ले जमाने भर में है चर्चे मेरी तबाही के मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले हाँ मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले बेटा हाजी गुलाम खासकेली झंडो मरी खां कुर्बान अली खासकेली ॿुधे पियो तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾा वहां जा

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: अपेक्स कमेटी जो सूबे में दहशत गर्दन खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने जो फैसलो गवर्नर फैसल करीम कुंडिया की सदारत हेठ सूबाई अपेक्स कमेटी जो इजलास वफाकी घरू वजीर कोर कमांडर पेशावर ए बेन अमलदार की शिरकत केपीएम दहशतगर्दी के खात्मे अमन अमान की बहाली लाए फैसला था कदम खण वरी अजम जो भी वर्चाओ पुलिस ए सीटीडी के जदीद हथियार दियण जो फैसलो पदराए में चयो वियो आहे त दहशतगर्दी जो खात्मो समूरन इदारन की तरजीह आहे अमन अमान की बेहतरी लाए समूरा वसीला इस्तेमाल कया वेंदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो त तरक्याती मनसूबन की कुर्बानी डेई सकजे थी सिक्योरिटी ते ठाह न थींदो समूरो खैबर पख्तूनख्वा पुरअमुन आहे जाली वीडियोस की खबर पेजी वेंदी आहे असांजी नीयत साफ आहे हुकूमत लीड कंदी त सुठा नतीजा निकरंदा वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चयो आहे त शहरी दहशतगर्दीअ खां आजपो चाहिन था हुननि जो ख़्याल हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बायूं ॾींदा समूरो सूबो पुरअमुन आहे 24 कलाकनि दौरान सूरत हाल खे संभालियो ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां राब्तो करण ते बि मुशावरत बैरिस्टर गोहर सुभाणे पेशावर हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदे चयो त लॉन्ग मार्च ख़तम न आहे थियो गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ हर फोरम ते वेंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत सुहेल आफरीदीअ खे तहवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी सुतसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ जो चवणु आहे त केपीअ में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद सुहेल आफरीदीअ खे तहवील में वरितो वियो आहे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा काबीना जे ॿियनि मेंबर्स बाबति फ़ैसिलो एडवाइज़री काउंसिल कंदी सुहेल आफरीदी जी क़यादत में पीटीआई हुकूमत TTP सां पावर शेयरिंग तहत कम करे रही हुई गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो अवाम रस्तनि ते नाहे निकितो जंहिंजो मक़सदु आहे त अवाम ख़ुशि आहे तहरीक इंसाफ़ मार्च जे नाले ते मुल्क ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कई हुई इंतिहाई क़दम खणण खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचियो हो कानून मूजिबि एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लॻायो आहे मुल्क में अॻु बि एमरजेंसी लॻंदी रही आहे बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ जो चवणु आहे त PTI ऐं उन जे इतिहादनि सां डिघियूं ॻाल्हियूं कयूं वयूं जिते बि वियासीं उतां जेको आवाज़ आयो उहो मुल्क जे ख़िलाफ़ हो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में हुननि 13 साल हुकूमत कई पर का बि बहितरी न आई आहे नई मुआशी इस्तहकाम आयो ऐं नई वरी दहशतगर्दी ख़तम थी आहे ब्राज़ीली फ़ौज जी आला सतही वफ़द जो GHQ जो दौरो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां मुलाक़ात ॿिन्ही मुल्कनि जो लाॻापन ते एतमाद जो बि इज़हार दिफ़ाई सहकार खे वधीक वधाइण ते बि इतफ़ाक़ ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ब्राज़ील सां दिफ़ाई लाॻापन खे मज़बूत बणाइण वारो अज़म वरचायो ब्राज़ील जे फ़ौजी सरबराह पाक फ़ौज जे पेशेवराने सलाहियतुनि ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि खे साराहियो ऐं इलाक़ाई अमुन इस्तहकाम लाइ पाक फ़ौज जे किरदार जो एतराफ़ कयो पाकिस्तान जो नायब वज़ीर आज़म इश्ताक़ डार जो चवणु हो त पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके ख़िते में अमुन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पूरा करे सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो पाकिस्तानी शहरी शहीद 11 ज़ख़्मी शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल सऊदी अरब पारां हमले में पाकिस्तानी शहरीअ जे शहीद थियण जी तस्दीक सऊदी जी तवानाई वाले वजीर चयो आहे त हुसैन जे हमलन जो सख्त जवाब ॾियणु घुर्जे। आबनाए हुरमस ते अमरीका ऐं ईरान में डेडलॉक बरकरार, कतरी ट्राकड बि अगभराई कराए न सघी। आबनाए हुरमस में तेल बरदार बेड़न ते हमला जारी। अमरीका में तहरान जी बहरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान सत शर्तुनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई जो चवण हो त अमरीका सत शर्तुनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तहरान लाइ नाकाफ़ी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 Network सिंध की आवाज।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ।
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वेलकम बैक मजेस सामाईन, ही आहे GFM 88 रेडिओ नेटवर्क, शो आहे सिंधड़ी जी शाम, आरजे युनिस बकारिये जा सलाम। जी मजेस सामाईन, जिते जिते असांजो आवाज पहुचे पियो, सभिनी खे भली कार खुश आमदीद। जेकॾहिं असांजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त शो जे हिन हिसे में असां वठंदा आहियूं अवां जूं लाइव कॉल्स। बस पोइ लाइव कॉल्स लाइ तयार आहियो? यकीन तयार हूंदो त अॼु कंदासीं अवां सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। नंबर नोट करे वठो 0334352578 6। ॿुड़ी 324 5025 786 नंबर ते करियो कॉल।

0: तमाम घणी महिरबानी सभिनी जूं लख थोरा सुणा साईं लख थोरा ख़ुशि हुजो जी
1: जनाब
0: ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवां हिकु वक़्तु सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ास मोरो मेहरापुर सकरंट मटियारी ऐं मातलीअ जी आवाज़ खे कनायो पिया जी हा सिंध जो आवाज़ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवां सां मुख़ातिबु आहे कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी छा हाल आहे साईं अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अवां सां गॾु ॿिया दोस्त आहिनि गॾु
2: जी बिल्कुल
0: थैंक्यू महिरबानी वॾा वॾा वॾा वॾा कुर्ब आबाद हुजो साज़ ऐं आवाज़ जो साथ मोहबतुनि ऐं मुर्कुनि जो मेलो ॾिसंदासीं त असां गॾु हाणे कॉल ते केरु थो जुड़े हलो अस्सलाम अलैकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां
3: सर काचे मां ॻाल्हायां पियो गांधार चांडे वारे रसगुला रसूल चांडे जे गोठ खां
0: जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: मूंसां गॾु मुंहिंजा कुझु वार आहिनि सर हिकु नंढो अर्ज़ु आहे
0: जी हुकुम करियो
3: सर असां अंबर महक जो कलाम ॿुधायो हुन जा बोल अथसि उहो परदेसी दिलि जा तका हाणे त मोटी आव मिठा
0: जी इनशाला कोशिश कंदासीं अगरि उहो गानो न हूंदो त को बि अंबर जो गानो ॿुधण में ईंदो तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: मुंहिंजा ॿाहिरि नाला अथसि चांडियो ऐं मुंहिंजो दोस्त इम्तियाज़ चांडियो ऐं
0: मोहबतूं साईं मोहबतूं लख थोरा चवंदो सर थैंक्यू सो मौज़े सामाईन अञा ईंदड़ मैसेजिस अवां जूं कॉल्स यकीन शो जे लाइ ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु थो जुड़े हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहब ऐं किथां खां अल यार महिरबानी तव्हांजो लख थोरा अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे जी तमामु घणी महिरबानी लख थोरा सुहिणा साईं कुर्ब तव्हांजा

0: जी जनाब वेलकम भलीकार दानिश बकारी साहब असंगे ज्वाइन कयो दानिश वेलकम चंदासी ता के ता आईडिया दिनी है राय दिनी है त बैकग्राउंड जो वॉल्यूम थोड़ो घट कयो ओके साईं हाजिर थैंक यू वेरी मच ता असंगे याद रिया रे त बैकग्राउंड आवाज वधिक है ओके दिसनासी कॉल ते के हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केर साहब है किथा का रुस्तम अली पवार के भलीकार चवंदा सी केड़ा हाल ठीक आयो चंगा भला
1: शुक्र हाल है ताना ता बुदायो खुश लगा पे ओ चांग प्रोग्राम आ न पियो पोची असा को दोस्त तांग प्रोग्राम फोन ते दो बुदाय
0: पो यो ठीक का कोन को तो जरियो हो जे ना ता ताई असा आवाज पहुंचे अच्छा हम असा के भी केर पे बुधे ए उन जो नालो खणो जे ता के रेडियो ते बजाए टेलीफोन ते प्रोग्राम असा ने बुधरायो
1: तांजो प्यारो दोस्त मलिक मोहम्मद बलोच मिठी थर पार कर खा वो प्रोग्राम तांजो बुधाए पियो
0: थैंक यू मलिक मोहम्मद बलोच साहब केर हों जो गड हों के लिए बुड़ी 324 पंटी पंजवी 786 नंबर कॉल से हल्दी दिसासी केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का
2: रहमत अली जखरानी
0: छा हाल है रहमत अली जखरानी साहब खुश आयो जेके बाबा जी मौसम की आ
2: मौसम जुड़ाली मौसम बेहतरीन जबरदस्त मौसम सर बटे दिन से
0: हाँ भला गर्मी है या सर्दी है
2: ना हाँ गर्मी हली सर
0: गर्मी खत्म थी वही है हाँ मौसम नॉर्मल थी वही अच्छा अवा सा भी केर पे बुधे
2: रस्तम तार नजीर मंगर सिकंदर शंबाणी पठान पटकी और शंख जकरण
0: सभी जो मेहरबानी लख थोरा मिठन मानून जा लख थोरा जो कि असंग जो

0: किरोड़े कुर्ब सभिनी जूं महिरबानियूं लख थोर साईं लख थोर ओके जनाब ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क भली महफ़िल भला माण्हू भली आया भली आया भली महफ़िल भला माण्हू भली आया अखियूं आतियूं हुयूं जिन लाइ हली आया सो जनाब अवांजा मैसेज अवांजी कॉल्स हूंदियूं जारी हिकिड़ो ब्रेक वठणो आहे पर कॉल अटेंड करे था वठूं हलो अस्सलाम वालेकुम
1: हलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: अलहमदुल्ला
0: केर साहब ऐं किथां खां महिरबानी लख तौर सुहिणा साईं अवां सां गॾु ॿियो केरु शामिल आहे
1: जी सर
0: जी जी अवां सां गॾु ॿियो केरु शामिल आहे दोस्तनि जा नाला वठंदो ओके जनाब ज्यादा हलो हलो न थींदी ॻाल्हि मां ॻाल्हि थींदी ब्रेक वठणो आहे कमर्शियल ब्रेक आहे बिना ब्रेक वापसि ईंदासीं असांजो अधु कलाक जो साथ बाक़ी सलामत रहंदो
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जै में आहिन चावरन जो खूबियो कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस झुरन के घट कन रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन सा गरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै हर कतरे से चेहरे के मिले

0: सुरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 0310-3143-842।

पाकिस्तान की शान वादी महरान महरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: वेलकम बैक मजी सामीन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। हिकी वक्त GFM 88 सखर, GFM 88 लाड़काड़ू, GFM 88 मीरपुर खास, GFM मोरो, GFM मेरापुर, GFM सकरेंट, GFM मटियारी, GFM मातली जो आवाज। सिंधड़ी जी शाम शो जो नालो आहे, यूनुस बकारी मु आरचे जो नालो। किथे किथे गोठन वायणन वस्तियन वस्तियन में असो आवाज पहुंचे पो, जैसे अभी बुध पाया तो कॉल कर 0334352578 असा नंबर है, बुड़ी 334 पंटी पंजी 786 तो डिंदी गड कॉल से केर है। हलो अस्सलामुअलैकुम साईं, केर साहब ए किथा का? छाल सियाल साहब खुश आयो? ठीक आयो, चंगा भला।
1: यूनुस साहब अल्हम्दुलिल्लाह असि खुश आयो, यहां जो प्रोग्राम बुधौं ता दादी पुछी थी पे उम्मीद आए ता हम बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ता जे दुआन सण ठीक ठाक आयो, असा कदी बे केर पे बुधे साईं?
1: हाँ बिल्कुल साईं, मुझे नवाबी संघ जा कुछ दोस्त आयन, अजीब ला फुलपोटो मंजूर से फुलपोटो आए से सिग्नेचर चार रहमान शबान अजी छतरा मैडम सुंदर से
0: जी जी, आए
1: जेके भी 88 नेटवर्क जेके असा दोस्त आयर मोहन था भेनर सभी के सलाम, अवां के अवां पूरी टीम के सलाम,
0: अवां
1: के जीत भी के दींदे दींदे एक भिटाई घोट भेट बुधाना वो
0: जी जी,
1: जेजो तो जो नाव बाजी भी होदा ही मंगा, जेजो तो जो नाव बाजी भी होदा ही मंगा, री थे री थूनी तू छपर तो छा आओ गुजारो कहा तो मालूम सब।
0: सुभान अल्लाह, मेहरबानी साईं, लख तो रहा जी जनाब। यह है GFM 88 रेडियो नेटवर्क। अमन जा मैसेजेस तो शामिल किया सी, अमन कॉल्स भी शामिल करना लगा सी। कॉल पे केर आहे? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: केर साहब हैं किथा का? हेलो अदा गलाए वठो, नालो बुधायो, नालो बुधायो भा।
2: सर बाबा देवराम खास के लिए।
0: किथा खा?
2: हरी मीर वा गिल्ला खेत पर मीरत पर।
0: वेलकम चना सी ता के भली कार है, अमा सकत बे केर पे बुधे? हां
2: सर गुलाम हुसैन खास के लिए, अली रजा खास के लिए, फारूक हुसैन खास के लिए सर।
0: जी जी लखत हो रहा ता जा, थैंक यू वेरी मच, भली कार है।
2: मेहरबानी सर,
0: वडा वडा साईं, वडा वडा जी जनाब। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क, शो आहे सिंधड़ी जी शाम। सो अवां ताईं असांजो आवाज़ यकीनन पहुचे पियो, जेकॾहिं पहुचे पियो त वाह वाह, ऐं कॉल करे सघो था, ॾिसंदासीं कॉल ते केर आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब ऐं किथां खां?
3: जेकबाबाद खां शौकत अली जखराणी ॻाल्हायां थो।
0: शौकत अली जखराणी साहब वेलकम चवंदासीं, भली कार चवंदासीं, भली करे आया जी करे आया।
3: मेहरबानी,
0: थैंक यू वेरी मच, लख थो रहा अवां सां गॾु केर पियो ॿुधे?
3: कोई दोस्त आहे रुस्तम पावर आहे, नज़ीर अहमद मंगरियो, रहमत अली जखराणी, प्यार अली लोंडा, जेके सभिनि खे सलाम।
0: तमामु घणी महिरा, कहिड़ो ॾींहुं कुर्बत सुहिणा साईं, तमामु घणी मोहबतूं अवां जूं, अवां असांखे कॉल कयो। हे आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। जी जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केर आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब ऐं किथां खां?
4: टिकर जारा बाबर चांडियो थो ॻाल्हायां।
0: जी बाबर चांडियो, अवां सां गॾु बि केर पियो ॿुधे?
4: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु, फ्री प्यारा ज़ुल्फ़कार चांडियो, साजिद चांडियो, ज़ाकिर चांडियो, समीर चांडियो, इमरान चांडियो।
0: महिरबानी, लख थोरा, लख थोरा साईं, लख थोरा, तव्हांजा ख़ुशि हुजो।
5: सजण ॾेखारी थो मूंखे माणा करे तूं मारी थो।
0: जी जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: हलो
0: हलो, पंहिंजो रेडियो परे कयो, अदा रेडियो परे कयो, रेडियो जो आवाज़ डबल पियो अचे। जी अदा जेको रेडियो पासे में हलाईंदो त मां उहो अव्हांजी कॉल नथो वठी सघां, छो त रेडियो थोरी देरि पोइ ते वॉइस खणी ईंदो, इन करे अव्हांखे पराई कॉल ॿुधण वेंदी। जॾहिं बि कॉल करियो त रेडियो खे या बंदि करे छॾियो या परे करे छॾियो। उनके चवंदा आहिनि रेडियो जी ॿोली में इको, यानी रेडियो जो आवाज़ डिले ईंदो आहे थोरी देर। कॉल तव्हां जे आरजे खे न ॿुधंदव, तव्हां रेडियो खे ॿुधंदव पियो, कॉल खे गॾु ॿुधंदव पियो, तव्हांजी न ॻाल्हि सुठी थींदी न ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। ओके जनाब, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? साईं हाफ़िज़ ताहिर जिंजी साहब, वेलकम चवंदासीं, भली कार।
6: जी जी अलहमदुल्ला, यूनुस बकारी किसान भाउ, ख़ुशि आहियो?
0: अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि, मालिक साईं जूं महिरबानियूं आहिनि ऐं अव्हां जूं मोहबतूं आहिनि, महिरबानियूं। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं?
6: बिल्कुलु, असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं पिया, पर तव्हांजी नशरियात बिल्कुलु लोटे जी पटड़ी में नशरियात।
0: साईं मां थोराए थो तव्हांजो, अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
6: साईं
0: जी गॾु, हा नाला खणी वठो जल्दी जल्दी।
6: ऐं मुंहिंजो मामू बिल्कुलु डिक्लेट आयल आहे, मामू कामिल, तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। ऐं बिल्कुलु तमामु मुंहिंजो प्यारो दोस्त बाबा शौकत भौरिया खां प्रोग्राम ॿुधे पियो।
0: जी जी।
6: ऐं तमामु आमर तव्हांजो ॿुधाइणो पुराणो ॿुधंदल उहो बि ॿुधे पियो। मुंहिंजो पुटु नवाब जंजी बि मूंसां गॾु आहे, तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो।
0: किरोड़े कुर्ब सभिनी जूं महिरबानी, लख थोरा सोणा साईं। लख थोरा। हाफ़िज़ ताहिर जिंजी साहब असांखे नहटे जी नगरीअ खां ज्वाइन कयो, कॉल कई ऐं हाणे ॾिसंदासीं त कॉल कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम अलैकुम। हलो, अस्सलाम अलैकुम।
7: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां? फ़हीम चांडियो साहब, महिरबानी, लख थोरा। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी। पोइ तव्हां रेडियो कोन पिया ॿुधो, तव्हां कॉल कीअं कई आहे साईं? साईं न साईं, रेडियो रेडियो न हले थो त कॉल न कयो, हीउ रेडियो हले पियो। हीअ तव्हांजी कॉल लाइव पई वञे सोणा साईं, कॉल लाइव पई वञे, प्लीज़ प्लीज़ कुझु ख़्यालु कयो। रेडियो सां जॾहिं लाइव कॉल वञे थी तॾहिं तव्हांजी कॉल अचणु खपे, जेकॾहिं तव्हां रेडियो न पिया ॿुधो त कॉल कीअं पई अचे तव्हांजी? अॼु मज़ो थियो त मां जेॾी महिल ब्रेक वरितो हुन महिल मूं ॾिठो पियो त हुन महिल माण्हू कॉल कनि पिया, माना रेडियो जेके उहे माण्हू कॉल कंदा हूंदा जेके रेडियो ॿुधनि था। त जेकॾहिं ब्रेक आहे या को मसलो आहे, को टेक्निकल मसलो थी सघे थो, अव्हां जी वेझो स्टेशन जेका आहे उहा प्रोग्राम खे ब्रॉडकास्ट न कंदी हुजे, सबबु को रीज़न हूंदो, छो त टेक्निकल ज़मानो आहे न, त का शइ टेक्निकली जेकॾहिं मिस्टेक आहे या को मसलो आहे या को फॉल्ट आहे त उन जे करे तव्हांजी कॉल अचे ऐं वरी तव्हां रेडियो जी शिकायत बि करे मां रेडियो कोन पियो ॿुधां, त पोइ त उहे जेके ॿुधनि पिया उन्हनि वीचारनि जे लाइ त वॾो मसलो हूंदो न। सो गुज़ारिश इहा आहे, जॾहिं तव्हां रेडियो ॿुधो असांजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे, कॉल करियो ताकी असीं तव्हां खां ॻाल्हि पुछूं। इन जे करे उमेद आहे त आईंदा रेडियो ॿुधी पोइ कॉल करियो। हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं केरु साहिब ऐं किथां खां? शहज़ाद डंगड़ो साहब खे भली कार चवंदासीं सोणा साईं, अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? नंबर कोन लॻंदो न, उन जे करे त नंबर ते हज़ारे नंबर कॉलूं कंदा आहिनि, जॾहिं कॉल लॻी आहे त हाणे तव्हांजो रेडियो ते आवाज़ अचे पियो, तव्हां ॿुधायो त तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ॿुधायो नाला उन्हनि जा, जल्दी जल्दी वठो। महिरबानी, लख थोरा, तव्हांजा लख थोरा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क, अव्हां सां यूनुस बकारी मुख़ातिब आहे। जॾहिं तव्हांजी मिठी मिठियूं ॿोलियूं, जॾहिं तव्हांजी मिठियूं मिठियूं लोलियूं पहुचंदियूं आहिनि, जॾहिं मिठड़ा आवाज़ तव्हांजा ॿुधंदा आहियूं त असांखे बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं केरु साहिब ऐं किथां खां? रांझन कोरी खे भली कार चवंदासीं सोणा साईं, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
8: मूं सां गॾु हिकिड़ो डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर फरहान आहे, ऐं जूने जो बिरादरी, कोरी बिरादरी, ख़ासिकली बिरादरी,
0: सभिनी बिरादरीनि खे भली कार, सभिनी खे भली कार, भली कार सोणा साईं, महिरबानी। खुश हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू थैंक यू।

0: ॾिसंदासीं हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम. हलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ अचे पियो? शुक्र अलहमदुल्ला. केरु साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे चोवन कुमार कोहली साहब? ठीकु आहियो, चङा भला आहियो. मतारा जोड़ ॿार बचा टंगड़े में?
1: ठीकु
0: ठाक, सभु ख़ैर लॻो पियो. हिन गर्मी जी सूरत हाल में केरु पियो ॿुधे?
1: गर्मी में साईं कासम लचवाणीपुर मां ॿुधे पियो, ऐं दोस्त असांजे यूनस यूनस साहब खे ॿुधनि पिया. ॿुधनि था
0: भली ॿुधनि.
1: रामचंद मकवाड़ो आहे पियो, गुलाब गुल आहे, रुस्तम पवार खे चोवट जा सलाम.
0: साईं साईं वालेकुम असलाम. मोहबतूं मिठा माण्हू कुर्बत आया.
1: महिरबानी सर.
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो.

0: कन्हे वलसो सणा सावल इसनासी कॉल पे के रहे जो तो आखिरी गानो है आखिरी कालो है इसनासी कॉल पे के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का
1: सर खान चांडिया को गलाया गोटोकन पुछा देखा
0: जी चांडिया साहब वहां से कद भी केर पे बुदे
1: मुझे दोस्त ने इम्तियाज चांडिया ममता चांडिया
0: जी जी
1: ज्ञानदार चांडिया शुक्र चांडिया सर
0: तमाम घणी मेहरबानी लखतोरा सोना साईं जलाल चांडी जी सुरीली सदा सिंध जी हवाओं में गूंजे थी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम आवाज़ अचे पियो ओके जनाब शायद हमरा कॉल मूंखे मिलाई ॻाल्हियूं ओड़े पाड़े सां पियो करे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब ऐं किथां खां जी अवां सां करीब केरु पियो ॿुधे जी जी महिरबानी अवां जूं लख थोर आहे अवां जी कॉल जो आवाज़ शायदि सिग्नल घटि आहिनि थैंक यू भलीकार रेडियो नेटवर्क दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो लफ़्ज़नि जी लुगत जो ॼाणे नथो वरकु सोई माणे नथो लफ़्ज़नि जी लुगत जो ॼाणे नथो मुरकु सोई माणे नथो चंड चथरूं कंदे धरतीअ खे चयो तुंहिंजो औलाद तोखे सुञाणे इन ई ते अॼोको प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुचे थो साज़ ऐं आवाज़ जे साथ जी पुॼाणी नाहे थींदी साज़ तेसीं ताईं सलामत हूंदा जेसि ताईं सिंध वारा सिंध जी मौसीकी ॿुधंदा आवाज़ मुसाफ़िर बनजी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां अवां ताईं पहुचंदा दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो वक़्त जे वहिकरे में वञण जी वाई वरे थी मोकिलाए थो साज़ ऐं आवाज़ जो साथ पुॼाणी ते पहुचाए थो इनशाला वरी मिलंदासीं हयाती रही त सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं जो मेलो मचंदो तेसी ताईं यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दर बनजनि साथ सलामत सिक सलामत अलाह निकिबान

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: बारिश हालत में भी चला है. इंतजार में आया त केर अची काहे वञे. सिक्योरिटी फोर्सेस के जेके वसीला घुर्बल हूंदा ॾेई छॾींदासीं. समूरो खैबर पख्तूनख्वा पुरअमुन आहे. जाली वीडियोज़ जी ख़बर पइजी वेंदी. असांजी नीयत साफ़ आहे. हुकूमत लीड कंदी त सुठा नतीजा निकरंदा. वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवण हो त शहरी दहशतगर्दीअ खां अचपोच आहिनि था. हुननि जो ख़्यालु हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बाहियूं ॾींदा. समूरो सूबो पुरअमुन आहे. 24 कलाकनि दौरान सूरत हाल खे संभालियो. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी. सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात. खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल करण जो ऐलान कंदे चयो आहे त लॉन्ग मार्च ख़तम न आहे थियो. गवर्नर राज ऐं इमरजेंसी ख़िलाफ़ हर फोरम ते वेंदासीं. वफ़ाक़ी हुकूमत सोहेल आफरीदीअ खे तहवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी. सुत समा वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ जो चवणु आहे त केपीअ में इमरजेंसी ऐं गवर्नर

0: डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घनजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3-41-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदो कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331-2525-786
1: जी हा 2-331-2525-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

वगैरह कयो वतन पिरतन छिनन पाण में, वगैरह कयो वतन पिरतन छिनन पाण में, पसो पखेड़न माणुआ मेठ घण। ही आ जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज। अवां जी खिदमत में प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे रस रियाण। शाम ऐं रात जे हसीन संगम ते ही प्रोग्राम तरतीब ॾेई संवारे ऐं सिंगारे अवां जी खिदमत में खणी आऊं हाज़िर आहियां। अवां जो मेज़बान, अवां जो भाउ, अवां जो दोस्त ऐं अवां जो आरजे मीर मुर्कवाढो। साईं मुंहिंजा कहिड़ा हाल आहिनि? असांखे उमेद आहे तव्हां जिते बि हूंदा ख़ुशि हूंदा। असांजी हूअं बि अव्हां जे लाइ इहा दुआ हूंदी आहे त ख़ुशियुनि जा खोड़ गुलाब अव्हां जे जीवन झोल में सदाई टिड़ंदा ऐं झूमंदा रहनि। आमीन सुम आमीन। अॼोके प्रोग्राम खे अव्हां ते पहुचाइण में मुंहिंजे भर में वेठल आहे, बिल्कुलु साथ ॾेई रहियो आहे शाह नवाज़ ख़ासि कैली। शाह नवाज़ जी महिरबानी, अवां जी महिरबानी, अवां जो मोहबतूं अवां ॿुधो था। कुझु हिकु अधु हफ़्ते जी गैर हाज़िरीअ खां पोइ वरी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। उमेद त असांजो साथ ऐं असांजी हाज़िरी अवां खे क़बूल पवंदी। अॼु बि प्रोग्राम में बि कंदासीं अवां सां ॻाल्हियूं। जेकॾहिं अवां बि ॻाल्हियूं करणु चाहींदा त असांखे मैसेज कंदा, अवां जा नाला बि वठंदासीं ऐं अवां जा पैगाम बि पहुचाईंदासीं ऐं गॾो गॾु ख़ूबसूरत मौसीक़ी ते प्रोग्राम जो हिसो हूंदी, उहा तव्हां ताईं पहुचंदी ज़रूरु इनशा। मैसेज करण जो तरीक़ेकार हाणे बिल्कुलु अव्हां जी दिलि ते लिखियलु आहे, पर जेकॾहिं नवां सामिन, नवां ॿुधंदड़ साथी असांखे ज्वाइन कनि पिया या ज्वाइन करे छॾियो अथनि त उन्हनि खे ॿुधायूं त अव्हां मैसेज ऑप्शन में वञी करे लिखंदा MTI। MTI मुखफ़ आहे या शॉर्ट फॉर्म आहे मातलीअ जो। MTI लिखण खां पोइ थोरी बि थी, यानी थोरो स्पेस, हुन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, पंहिंजा नाला ऐं का अहिड़ी ॻाल्हि असां सां शेयर करणु चाहियो उहा बि लिखी सघो था। जीअं नंबर ते मोकिलींदा, उहो नंबर आहे 88 81 जी 888-1। साईं मुंहिंजा हाज़िरी ऐं गैर हाज़िरी जी ॻाल्हि कईसीं। हाज़िरी स्कूलनि में लॻंदी आहे, हाज़िरी मुख़्तलिफ़ इदारनि में लॻंदी आहे, जेकी बि इदारा जिते कमु थिए थो, कार वहिंवार ज़िंदगी जो हले थो, ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ तबिका आहिनि, मुख़्तलिफ़ शोभा आहिनि, जिते माण्हू वञनि था, फ़र्द वञनि था, कमाइनि था, महिनत कनि था ऐं ज़ाहिर आहे उन्हनि जी जुस्तजू आहे जंहिंसां असांजो मुल्क हले थो ऐं हिन मुल्क खे संवारण में ज़ाहिर आहे असांजा फ़र्द आहिनि। उहे महिनत कनि था, हिमत कनि था ऐं असांखे करणु घुरिजे। असां पे कई ॻाल्हि हाज़िरी ऐं गैर हाज़िरी जी, त कॾहिं कॾहिं गैर हाज़िरी बि लॻंदी आहे। कंहिं कंहिं माण्हू गैर हाज़िरी कोशिश कंदा आहिनि त लॻाए छॾियूं, हू सम्झंदा आहिनि त भला ठीकु आहे, भला अॼु असां गैर मौजूदगीअ जो अहसासु ॾियारियूं, ॾिसूं त कंहिंखे अहसासु थिए थो, असांखे को यादि करे थो या असांखे को यादि नथो करे। पर कॾहिं कॾहिं मजबूरीअ में बि गैर हाज़िरी लॻी वेंदी आहे। बहरहाल मुख़्तलिफ़ सबबु थी सघनि था। ॻाल्हियूं अलाई आहिनि, ॻाल्हियूं खोड़ आहिनि, पर चाहियूं था फौजिया सुमरो जो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां जे समातन जे नाऊं कयूं। अखियुनि जी ॻाल्हि आहे, साईंदा सांद जी शायरी आहे, ॾाढा प्यारा ॿोल आहिनि, ॿुधी करे ॿुधाइजो कीअं थो लॻे हीउ गीत। केॾा न वञिजो, ॿुधंदा रहो जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज़।

फौज सुमरो जे आवाज़ में साईंदास सांत जी शायरी हलंदे असां ताईं मोहबतूं पहुतियूं आहिनि। ॻोठ सोराब निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी ऐं नंढड़ो निज़ामाणी बि हुननि सां गॾु आहे। अवां लिखियो आहे त प्लीज पिले फौज़िया, त फौज़िया ई पिले आहे, उन जे विच में अवांजो नाओ वरितो अथऊं। अवां कीअं पियो लॻे? महिरबानी यादि करण जे लाइ, मोहबतूं ॾियण जे लाइ।

मोहब्बतूं फौजिया सुमर जी आवाज़ में गीत हलंदे वरी असांखे मिलियूं आहिनि। गोठ अलाह ॾिठो ख़ासखेली लॻ घड़ो बंगलो जी आहे, उतां रियाज़ अली ख़ासखेली साहिबु, मुहरम अली ख़ासखेली, असलम ख़ासखेली, मोज़म ख़ासखेली साहिबु, हकीम मोहम्मद सालेह, अयाज़ अली ख़ासखेली साहिबु असांखे

अखड़ियूं हूंदियूं आलियूं आहिनि, अखड़ियूं कोशिश असांजी हूंदी आहे त कंहिंजूं बि अखियूं असांजी वजह सां, असांजे सबब जे करे आलियूं न थियनि। असां अवांजा नाला खणंदासीं। फारूक मल्हा साहब, मुख्तियार मल्हा साहब, टन मोहम्मद खान में हिन वक़्तु असांखे ॿुधनि पिया। फारूक साईं ऐं मुख्तियार साईं, वॾी महिरबानी अव्हांजो मोहबतूं। शायदि अवां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे प्रोग्राम में शिरकत कई आहे, वॾी महिरबानी तव्हांजी। लख थोरा मातली शहर खां असांजो पुराणो ॿुधंदड़ साथी आहे ख़ालिद नोतकाणी। ख़ालिद, वॾी महिरबानी। निसार नोतकाणी बि अवां सां गॾु हूंदो आहे, अवां सलाम चया आहिनि। मोट में असीं बि अव्हांखे वालेकुम सलाम चवंदासीं। अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि? हीउ प्रोग्राम अव्हांजो आहे। अवां जॾहिं बि असांखे मोहबत मां यादि कंदा आहियो त पोइ साॻी सिक मां यादि करणु अदम थी वञे थो त हीउ प्रोग्राम, हीउ जी एफ एम 90.4 मातली जी स्टेशन ई अव्हांजी पंहिंजी आहे।

अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त हीउ प्रोग्राम आहे रस रिहाण। रस रिहाण अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां। अॼु जो प्रोग्राम में आऊं ऐं अवां सां गॾु मुंहिंजो नालो आहे मीर मुरकवाडो। अवां जूं मोहबतूं असां ताईं वरी पहुतियूं। हुन नाला खणण जी कोशिशि कंदासीं। लाखाट खां मोहम्मद आलम मल्ला साहब असां सां गॾु आहिनि, अदनान अली मल्ला असां सां गॾु आहिनि, अकबर अली मल्ला साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं ज़ाहिद अली मल्ला असां सां गॾु आहिनि। उर्स चांडे साहब खे ॿुधण अवां चाहियो आहे, कोशिश कंदासीं, वाइदो नथा करियूं। अवां असांखे यादि कयो मोहबतनि में, वरी महिरबानी तव्हांजी।

में अचे पियो। तामुल साहब असांखे यादि कयो आहे टंडे जान मोहम्मद खां, वॾी महिरबानी तव्हांजी। तव्हां असांखे टंडे जान मोहम्मद खां यादि कयो, हीउ प्रोग्राम तव्हांजो जॾहिं बि असां ते पैगाम पहुचंदो त हिन प्रोग्राम में शामिल कंदासीं।

साईं हाज़िरी जी ॻाल्हि कईसीं, ग़ैर हाज़िरी जी ॻाल्हि कईसीं, कोशिश हुअणु घुर्जे त हाज़िरी हुअणु घुर्जे, ऐं हिन वक़्तु हाज़िरी आहे लाड़ जे लाॾे अलाए ॾिने जोड़े जी हकीम अर्शद जा ख़ूबसूरत ॿोल, पंहिंजे वक़्त जा यादगार ॿोल, कुझु क्वालिटी मूंखे लॻे पई पर ॿुधंदासीं गॾिजी। नाला वांजा अचनि पिया, ज़रूरु वठंदासीं, केॾा न वञो ॿुधो। नाला वांजा अचनि पिया, ज़रूरु वठंदासीं, केॾा न वञो ॿुधंदा रहो GFM 90.5 जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुबायल नंबर 03130863163।
3: खबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ाम।

कमर्शियल ब्रेक पुजाण अवां के बुधाइण हलूं थी प्रोग्राम रस रिहाण। रस रिहाण वञी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो मां। अॼु जो प्रोग्राम में आऊं आहियां अवां सां गॾु, ऐं मुंहिंजो नालो आहे मीर मुर्क वाढो। रसरियाण में ॻाल्हियूं पियूं थियनि हाज़िरनि जूं, गैर हाज़िरनि जूं, पखियुनि जूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं, पर सभ खां पहिरीं अवां जा नाला, अवां जूं ॻाल्हियूं, मुंहिंजी दिलि में अलाए छा आहे, अवां जी दिलि में अलाए छा आहे। मुंहिंजी दिलि में जेकी कुझु आहे उहे आऊं इज़हार करण पियो चाहियां हिन माइक्रोफोन जे ज़रिए अवां ताईं पहुचे पियो। दिलनि जे आवाज़ खे को को ॼाणंदो आहे। मुंहिंजी हिन ॻाल्हि ते भर में वेठल शाहनवाज़ कंधे खे धूणे पियो।

फहमीदा असांखे मैसेज कयो आहे, सलाम चयो अथनि। फहमीदा वॾी महिरबानी, ऐं अवां असांखा हाल अहिवाल वरिता आहिनि, असीं बिल्कुलु ठीकु आहियूं। असांखे उमेद आहे त अवां बि ख़ुशि हूंदा। सरमत सिंधी गाना ॿुधण चाहियो आहे, असां कोशिश कंदासीं, ॻोल्हा में लॻा पिया आहियूं, त जेकॾहिं उहो गीत मिले थो ज़रूरु अवां जे समातन जे नाऊं ज़रूरु कंदासीं। वॾी महिरबानी। चंड जान मोहम्मद खां हिकु दफ़ो वरी तामल देव कुमार पूरो नालो असांखे मोकिलियो आहे, तामल देव कुमार। तामल देव कुमार वॾी महिरबानी, चंड जान मोहम्मद मां अवां असांखे सारियो, हिकु दफ़ो वरी तव्हां मैसेज कयो, वॾी महिरबानी तव्हांजी लख थोरा। मलकाणी शहर जे वेझो ॻोठ आहे अहमद खान खोसो, उतां खां इमाम भाई खोसो साहिब, अनवर खोसो साहिब असांखे ॿुधनि पिया। वॾी महिरबानी इमाम बख्श साईं, अनवर साईं, ही प्रोग्राम ई तव्हांजो आहे, तव्हां असांखे यादि कयो, यकीन करियो ॾाढी ख़ुशी थी। अब्दुला टालपुर साहब असांखे ॿुधे पियो, अवां सां गॾु आहे अब्दुल कुद्दूस साहब, अब्दुल वहाब टालपुर साहब ई अवां सां गॾु आहिनि। अवां सलाम चया आहिनि, पहिरियों दफ़ो हिन प्रोग्राम में हिसो वरितो आहे, वॾी महिरबानी, अवां फरमाइश कई आहे, असां कोशिश कंदासीं जेकॾहिं असांखे उहो गीत मिले थो त ज़रूरु अवां जे समातन जो नाउं कंदा। अब्दुला साईं वॾी महिरबानी, अब्दुल कुद्दूस ऐं अब्दुल वहाब ई प्रोग्राम ई अवांजो लख थो रहे। लाखाट खां मोहम्मद आलम मल्ला, अदनान मल्ला, अली अकबर मल्ला, ऐं हिन भेरे वरी अवां सां गॾु आहे ज़ाहिद अली मल्ला, वॾी महिरबानी, अवां हिकु दफ़ो वरी असांखे यादि कयो, लख थोरा ही प्रोग्राम ई अवांजो पंहिंजो आहे।

सरमा सिंधी अवां जे लाइ असां प्ले कयो अखियुनि जी ॻाल्हि। फौजिया सुमरो जे आवाज़ में बि अखियुनि जी ॻाल्हि हुई, सरमद सिंधीअ जे आवाज़ में बि अखियुनि जी ॻाल्हि। अखियूं ॾाढियूं, अखियुनि ते बि मुख़्तलिफ़ शाइरनि शायरी कई आहे। असल ॻाल्हि त नज़र जी हूंदी आहे, असल ॻाल्हि त अखियुनि जी हूंदी आहे, ॻाल्हि त दिलि जी, पर ॻाल्हि अखियुनि जी बि हूंदी आहे। ॿुधूं था सरमद सिंधी खे।

मीर फकीरी शायरी ऐं सरमर सिंधी ख़ूबसूरत आवाज़ खां पोइ अव्हां खे इहो ॿुधायूं त प्रोग्राम रस रिहाण रस रिहाण वञी ख़िदमत में पेश कई पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो मां। अॼोके प्रोग्राम में मुंहिंजो अव्हां सां साथ मुंहिंजो नालो आहे मीर बुर्क वाढो। प्रोग्राम जी शुरुआत में मूं शाह साईं जो बेत पढ़ियो, वगर कयो वतन पिर्तन छिनन पाण में। त वाकई जेकॾहिं पखियुनि खे असां ॾिसंदासीं, उन्हनि जी पाण में जेका मोहबत ॾिसंदासीं, त इहा वॾी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं असां उन्हनि मां पिरायूं, जेकॾहिं असां इहे आहिनि शाह साहिब जा नासियाना बेत जिन में नसीहत आहे, जेकॾहिं असां गौर वीचार करियूं त पखी कीअं था पाण में गॾिजी उॾरनि, हिक ॿिए जो साथ कीअं था ॾियनि। जेकॾहिं असां जेके इंसान आहियूं, अशरफ़ल मख़लूकात आहियूं, उहे जेकॾहिं पखियुनि जे वग़ैरह खे ॾिसी करे बि जेकॾहिं थोरो सोच वीचार करियूं त घणो कुझु पिराए सघूं था, घणो कुझु हासिल करे सघूं था। जामोट फार्म रीचल खां मुश्ताक अली लाशारी साहब, बाबू लाशारी ऐं थरपारकर खां रजब अली समूह ऐं जाम खान समूह, अवां लिखियो आहे त अवीं सभु गॾिजी हिकिड़ी जॻह ते प्रोग्राम ॿुधो पिया। प्रोग्राम अवां खे वणे बि पियो। फौज़िया सुमरो खे ॿुधण चाहियो आहे त फौज़िया सुमरो त असां प्रोग्राम जी शुरूआत में ई अवां जे लाइ प्ले कई आहे, असांखे उमीद आहे त अवां ॿुधी हूंदी। पर जेकॾहिं फौज़िया जो आवाज़ अॼु अवां ताईं न पहुची सघियो त इनशाला असांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में अवां ताईं ज़रूरु पहुचंदो। सैयद जुमन शाह हयात सोलंगी जी ॻोठ ऐं ॻोठा बदीन जे वेझो तव्हां खां यादि कयो आहे। साईं जुमन शाह वॾी महिरबानी, अवां असांजा पुराणा ॿुधंदड़ साथी आहियो, मुंहिंजो आवाज़ ॿुधंदे ई अवां मैसेज कयो आहे। अवां जा लख थोरा अवां जो मोहबतूं।

ॻोठ जो नालो आहे खमू जोणे जो, राजे खानाणी खां, ऐं रक्षा ड्राइवर आहे मुख्तार अली जोणे जो। अवां प्रोग्राम ॿुधो पिया, मुबारक अली जोणे जो अवां सां गॾु आहे, शौकत लुंड बि अवां सां गॾु आहे, नंढड़ो फारूक अली जोणे जो बि अवां सां गॾु आहे। अवां सलाम चया न, वालेकुम सलाम मोट में चवंदासीं, वई महिरबानी बि चवंदासीं। ॻोठा जी ईसा जोणे जेका हाजी अब्दुल करीम जोणे जो, ईसा नाज जोणे जो, इमाजिद नाज जोणे जो बि असां सां गॾु आहिनि। साईं अवां जी महिरबानी, अवां बि हर भेरे असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, यादि बि असांखे कंदा आहियो, लख थोरा। फारूक मल्ला साहब, मुख्तार मल्ला साहब, नंढड़ी नूर निसा ऐं नंढड़ी आयान अली अमजद बि अवां असांखे यादि कयो आहे टने मोहम्मद खान खां। हिकु दफ़ो वॾी महिरबानी, हिकु दफ़ो वरी अवां असांखे मैसेज कयो, मोहबतूं अर्पियूं, लख थोरा।

ॻोठ सहतापो खां शायदि इहो लिखियलु आहे सलीम शेख साहब, हामिद शेख ऐं सालम शेख ऐं नंढड़ी ज़ाहिदा ऐं बाबा उमर शेख अवां असांखे यादि कयो आहे, फरमाइश बि कंहिं गीत जी कई आहे त असां कोशिशि कयूं था जेकॾहिं उहे गीत असांखे मिलनि था त अव्हांजे समातन जो नाम ज़रूरु कंदासीं। अवां मोहबतूं अर्पियूं, वॾी महिरबानी। साईं मुंहिंजो जेकॾहिं अवां बि हिन प्रोग्राम में हिसो वठणु चाहियो था त उन लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। अवां खे करणो पवंदो हिकिड़ो मैसेज पंहिंजे मोबाइल जे मैसेज ऑप्शन में वञी करे अवां लिखंदा MTI। MTI मुखफ़ी ऐं शॉर्ट फॉर्म आहे मातली जो। MTI लिखण खां पोइ थोरी विथी थोरो स्पेस, हुन खां पोइ पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, हुन खां पोइ पंहिंजा नाला लिखी सघो था ऐं हुन खां पोइ पंहिंजा नाला त ज़रूरु लिखंदो, तॾहिं असांखे ख़बर पवंदी। हुन खां पोइ जेकॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि जेका असां सां शेयर करणु चाहियो त उहा बि लिखी सघो था। जे नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर नोट करियो 888 1 3 8 ऐं 1 88।

डोकिया मोरीगा असांखे यादि कयो आहे इरफान लाशारी साहिबु ऐं वफ़ा एस के बि शायदि लिखियलु आहे, वॾी महिरबानी वॾी ऐं अवां असांखे यादि कयो इरफान लाशारी साहिबु, प्रोग्राम में हिसो वरितो लख थोरा। ॻोठ इस्माइल वाढे खां हफ़ीज़ वाढो असां सां गॾु आहे, मुज़फ़र वाढो बि गॾु आहे, नंढड़ी परिवेश बि असां सां गॾु आहे, बबलू वाढो बि असां सां गॾु आहे। अयाज़ गुल वाढो बि असां सां गॾु आहे, तव्हां सभिनी महिरबानी।

गोठ गेणू खान लगारी का हीर हीर मैसेज पहुंचो मोहरम लगारी साहब जो मोहरम लगारी साहब वरी मेहरबानी अवां छा लिखियो अवां लिखियो प्रोग्राम बेहतरीन आए असन ढोल फकीर बुधरायो हाजर ढोल फकीर के बसी गोलियों दा ढोल फकीर असन जो सीनियर सिंगर डाडो बेहतरीन फनकार पेंजे वक्त जो असन जो लीजेंड आवाज अवां उन जी फरमाइश कई मेरा लख थोरा अवां प्रोग्राम बुधो वरी मेहरबानी फिलहाल बुधंदा साईमा मंजूर के

0: नर, खुश्क और बेरोनक की स्किन और इमेज लाइ डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सन्ने जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सां गडोगड सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर

0: 0370-94-294.
1: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख भिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंद मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।

खबरन ऐं कमर्शियल स्पॉट्स पुॼाइण अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त हीउ प्रोग्राम आहे रस रिहाण। रस रिहाण पेश करे पियो वञे जी एफ एम 90.4 मातली लाइव स्टूडियो मां। अॼोके प्रोग्राम में आऊं आहियां अव्हां सां गॾु अव्हांजो मेज़बान, अव्हांजो भाउ, अव्हांजो दोस्त ऐं अव्हांजो आरजे मीर बुर्क वाढो। साईं, मुंहिंजा पखियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि पिया कईसीं, मोहबतनि जे हवाले सां ॻाल्हि पिया कईसीं। जेकॾहिं असां उन्हनि मां सबक़ हासिल करियूं त नफ़रतूं असां खां विसरी वञनि। नफ़रतनि खे विसारण जे लाइ असांखे मोहबतूं इख़्तियार करणियूं पवंदियूं। जेकॾहिं असां मोहबतनि जे पांध खे छिके रखंदासीं, जेकॾहिं मोहबतनि जे पांध खे असां झले रखंदासीं, त यकीन करियो त नफ़रतूं आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु थी वेंदियूं।

अवां जा नाला असां ताईं पहुता आहिनि, ॻाल्हियूं बि अवां सां हलंदियूं, अवां जा नाला बि पढ़ंदासीं। 888 ते अवां जा मैसेज असां ते पहुता आहिनि। अली अकबर खोर साहब हिकु दफ़ो वरी असांखे यादि कयो आहे। अली अकबर खोर अवां सां गॾु आहिनि। बेबी मुस्कान अकबर खोर ॻोठ जो नालो अवांजो आहे, उमर खोर मीरपुर भठोरे जे वेझो अवांजो ॻोठु आहे। हिकु दफ़ो वरी अवां असांखे यादि कयो, अवां लिखियो आहे त अवां असांजा पुराणा ॿुधाकसन हैदराबाद खां वठी, त मोहबत साईं अली अकबर वॾी महिरबानी। प्रोग्राम अवांजो पंहिंजो, हीअ स्टेशन बि अवांजी पंहिंजी आहे। अवां जॾहिं बि हिननि प्रोग्रामनि में हिसो वठंदा त असां ज़रूरु अखियुनि ते रखंदासीं अवांजा नाला। ऐं हाणे जेको मैसेज असां ते पहुतो आहे उहो लिखियल लिखियलु आहे डबल एस, डबल एस खां पोइ अलादीन लिखियलु आहे, वरी एम बि पोयां लॻल आहे। मूंखे त पढ़ण में अलादीन थो अचे, इन खां पहिरीं एस एस। बहरहाल जंहिं बि लिखियो आहे हुनखे अव्हांजी महिरबानी, अव्हां असांखे यादि कयो, मोहबत अर्पियो एस एस। प्यारा दोस्त, तव्हां असांजी शायरी नशर नथा करियो, बिल्कुलु कंदासीं। अव्हांजी शायरी मयारी हूंदी, पढ़ण जहिड़ी हूंदी त बिल्कुलु शामिल कबी। शायरी जो प्रोग्राम त ही नाहे, ॻाल्हियुनि जो प्रोग्राम आहे। अहिड़ी का सुठी ॻाल्हि बि लिखी सघो था, शेयर करे सघो था। इहा ॻाल्हि असां शेयर कई आहे एस के इरफान लाशारी साहब। एस के इरफान लाशारी साहब, वॾी महिरबानी। हीउ प्रोग्राम ई अव्हांजो पंहिंजो आहे, तॾहिं तव्हां वरी हिकु दफ़ो मैसेज लिखण ते मजबूर थिया ऐं असां अव्हांखे शामिल करे छॾियो। जाड़ा वाटर खां सलीम शेख जो मैसेज असां ताईं पहुतो आहे। अब्दुल रज़ाक दर्स ऐं चंदर कोली जो ऐं नंढड़ी ज़ाहिदा शेख बि असांखे सलाम चयनि। वॾी महिरबानी, अवां सभु गॾिजी प्रोग्राम शायदि किथे वेही ॿुधो पिया। अव्हांजा लख थोरा। हिन खां अॻु जो नगमे जे तरफ़लू, मौसीबी जे तरफ़लू हिकिड़ो मैसेज आहे। छो त वक़फ़ो तमामु घणो थी चुको आहे, ख़बरूं बि ॿुधियूंसीं, कमर्शल बि ॿुधासीं, नाला बि अव्हांजा ॿुधासीं, पोइ मौसीक़ी ज़रूरी आहे। हाणे हीउ जेको मैसेज आहे लिखियलु

आपका प्रोग्राम आया है अग्या लिखला पी अंग्रेजी जी पी अग्या लिखला अली हाने बेराल अवाई समझंदा जेको अमा लिखियो मु पढ़ी छियो वरी मेहरबानी प्रोग्राम के बुधण ए याद करण ला अवा ताई हाने एक एरो आवाज पहुंचाईदासी यकीनन अवा के वणदो जी अवा ते पहुंचायो ता मोहम्मद कासम ओठे जो आवाज एकडे ना अवा जे ला गोले खणी आया आयो

दिलदार तो वफा जो बदलो इहो दिनूआ जह महल याद आए तह महल मूरनूआ दिलदार तो वफा जो बदलो इहो दिनूआ जह महल याद आए तह महल मूरनूआ।

मोहम्मद कासम ओठे के बुधो सी परदेस तू हलियो वे मोकल भी ना जानी जडे मानू के मट अचे तो मोकल वठण जरूरी।

आहे, इजाज़त वठणु ज़रूरी आहे। जीअं को शागिर्द क्लास में बि दाख़िल थींदो आहे त इजाज़त वठंदो आहे, ऑफिस में बि इजाज़त वठंदो आहे। इहो हिकिड़ो एतराम जी निशानी आहे, अदब जी निशानी आहे, मोकल त वठणु घुरिजे। पर जेको न वठे त पोइ बहरहाल मोकल वठणु घुरिजे, इन सां मोहबतूं वधनि थियूं। जेतिरी जंहिंजी इज़त कबी उहो बि ओतिरी कंदो। अव्हां जा नाला मुंहिंजे साम्हूं आहिनि, ॻोठु ॻहिणे लॻारी खां हिकु दफ़ो वरी असां ताईं मैसेज पहुतो आहे मोहरम लॻारी साहब जो। मोहरम साईं वॾी महिरबानी, फते मोहम्मद बि अवां सां गॾु आहे, बाक़ी ॿ सिंधी में जेके नाला आहिनि पढ़ण जी कोशिशि कयां थो। मोहम्मद आशिक लॻारी आहे शायदि, ऐं मोहम्मद यया लॻारी साहब। अवां चइनि ई दोस्तनि गॾिजी हिकु दफ़ो वरी मैसेज कयो आहे, लख थोरा अवां जा। मीरपुर बठोरो सिंध जो नंढड़ो ऐं ख़ूबसूरत शहर आहे, उते असांखे यादि कयो आहे। जीअं हुन जे पासे में हिकिड़ो ॻोठु आहे गोराम खान खाड़क, उतां खां नूर मोहम्मद खाड़क साहिबु, वफ़ा हबीब जान खाड़क, मुनवर अली खाड़क साहिबु यादि कयो आहे, सलाम चया अथनि। वॾी महिरबानी साईं, अव्हांजो ॿियो मैसेज बि असां ताईं पहुतो आहे। नूर मोहम्मद खाड़क साहिबु, हबीब खाड़क साहिबु, मुनवर अली खाड़क साहिबु, अव्हांजा साॻिया ई नाला आहिनि। मास्टर वली खे अव्हां ॿुधणु चाहियो आहे, कोशिशि कयूं था जेकॾहिं असांखे नगमो मिले थो त ज़रूरु शामिल कंदासीं। अव्हां जा लख थोरा। ट्रेल स्टाफ खां यूसुफ चांग साहब असांखे यादि कयो आहे। ट्रेल वाहन जी थींदी आहे, जिते टे चार वाह पाण में गॾबा आहिनि, हिकिड़ो वॾो वाह ऐं हुन में वॾे वाह मा वरी मोरी हुजे ऐं उते वरी मुख़्तलिफ़ वाह निकिरनि, मुंहिंजे ख़्याल में ट्रेल हुनखे ई चइबो आहे। उतां खां यूसुफ चांग साहब असांखे यादि कयो आहे, सादिक चांग यादि कयो आहे, ऐं जान चांग आहे या वाजिद चांग आहे, सरमद चांग बि आहे, ऐं नंढड़ो रहमान चांग बि आहे। असां सां मोहबत वरपियो, वॾी महिरबानी। ॻोठ सोहराब निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी हिकु दफ़ो वरी मैसेज कयो, शायदि प्रोग्राम अमांखे वणे पियो, तॾहिं ई तव्हां हिकु दफ़ो वरी असांखे यादि कयो आहे। नंढड़ो एहसान निज़ामाणी बि अवां सां गॾु आहे, अवां लिखियो आहे त म्यूज़िक लाजवाब आहे, नाइस आहे, वॾी महिरबानी। म्यूज़िक अवांखे वणे थी, प्रोग्राम अवांखे वणे थो, इन जे लाइ असांखे ख़ुशी थिए थी।

शहीद फाजिल राहू का मोहम्मद जुमन खास के लिए साहब असा याद किया। माय डियर बिरादर मीर मुर्क वड़ी मेहरबानी साईं तमाम असा भा आयो लख थोरा मोहम्मद जुमन खास के लिए साईं ही प्रोग्राम अवजो अवं जडे भी असा मोट डींदा जडे भी असा याद कंदा जडे भी मैसेज कंदा तो असा पैं अखियन से रखासी अवं के इन प्रोग्राम में जरूर शामिल कंदासी छो तो शामिल करण असा ते फर्ज आए। दिले करे छी अवां जे लाइ नियाज पिताफी शायरी आवाज कंहिंजो आहे जी हा आवाज़ आहे अंजु मारा जो हीप पंहिंजे वक़्त जा यादगार ॿोल अवां जे लाइ त प्ले कया आहिनि त पोइ ॿुधो जी एफ एम 90.4 मातली सिंध जो आवाज़

नियाज पिताब जी शायरी अंजुम आरा जो खूबसूरत आवाज अवे समाचार में नाउ कयो सी अवे बुधाइन प्रोग्राम आ रस रिहाण रस रिहाण अवे खिदमत में पेश कयो पियो वंजे जीए एफएम नवे पतली जे लाइव स्टूडियो मजा जल्दी जल्दी में वंजा नाला पढंदासी नाला तमाम घणा पहुची चुको आ ने कोशिश कंदासी मुश्ताक अली लाशारी साहब बाबू लाशारी साहब जामुट फार्म रीचल का एक दफो वरी मैसेज किया है साई वही।

बानी अवां असां के याद कयो मोहब्बत अर्पियो मोहम्मद सलीम वाढो सोहेल सुभान अजान अले का याद पिया कन अवां लिखियो आए है त प्रोग्राम जबरदस्त आए त मोहम्मद सलीम वडी मेहरबानी याद करण जे लाए ए प्रोग्राम अवां जो त अवां जे लाई पेश कन आए।

अवां खां सवाइ कीअं गुज़रंदी शाम गुट जी इंद खान जमाली खां मीर मोहम्मद जमाली साहब यादि कयो आहे, लिखियो अथनि प्रोग्राम लाजवाब आहे। साईं वॾी महिरबानी ऐं सॼण सांगी जी वांट मुंहिंजा गुलाब गुल। हिकु दफ़ो वरी मैसेज कयो, अवां जा बि लख थोरा। पंहिंजी कचहरी अॼु एतिरी, इनशाला ताला वरी पंहिंजी मुलाक़ात थींदी ईंदड़ के प्रोग्राम में। मूंखे साथ ॾिनो शानवाज़ ख़ासि खेली। मास्टर वली जी खूबसूरत आवाज़ ते मीर मुल्क वाढे खे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं मुर्की ॾींदा। मोकल मोकिलायूं था, दुआने मोहबतनि में यादि रखिजो, गॾो गॾु पंहिंजो ख़्यालु रखिजो।

0: करते रहो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारहान शुगर मिल्स में लगाई पई वने, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़

0: अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यामी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-295-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।